0: ਹਸਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕਾਨੇ ਯਟ ਕਮਲੇ ਨੀ ਅਲਣਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੀ ਮਜਾਲ ਪਤਲੋ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ
1: ਇਟਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM,
8: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
8: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
9: We're not having that, are we?
8: No. Oi, hear that? It's water and cans.
10: And fix those drips and drops.
11: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together, it all adds up.
11: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
12: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
13: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
14: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
13: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
14: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
13: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
14: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
15: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
13: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना
6: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: Attention! Property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
9: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
10: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
9: सलासा ट्यूशन सेंटर?
10: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है.
9: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
10: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
9: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
11: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
12: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: It's commercial time.
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
8: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
8: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
9: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
9: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: This is a public service announcement.
11: The station
12: that plays
11: foot tapping music.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
7: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ये नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: Better. The radio station for people who love music.
1: But 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.1 एफएम लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए जी। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है जनाब, स्वागत है उन तमाम समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। बिल्कुल जी, रब्ता नंबर बताए देते हैं एक बार फिर से, 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे और एहसास लेंगे अपने होने का। आज की क्या विशेष टिप्पणी, आपकी क्या राय है आज के टॉपिक के हवाले से, एक बार फिर से मैं दोहराता चलूं कि आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा क्रिटिकल सा टॉपिक है। बहुत ही कॉमन ये इशू है हमारे मुआशरे का, हमारी स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी का, और जिस कम्युनिटी को हम लेके प्रेजेंट करते हैं 97.1 एफएम, ये जितनी भी हमारी नॉर्थर्न शहर की खूबसूरत सी कम्युनिटी है, इस तमाम में जो मेन पर्पस है वो ये है, या मेन इशू है वो ये है कि हमारे पास अक्सर जो फेलियर होता है, जो नाकामी होती है, जो हार होती है, उसके बाद हमारे पास क्या उम्मीद बाकी रह जाती है। और ये टॉपिक भी बड़ा मज़े का है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को अनाउंस किए देता हूँ आज के टॉपिक के हवाले से, और अपनी विशेष डेफिनेटली आप देंगे मुझे इस टॉपिक के हवाले से। जनाब, होप आफ्टर फेलियर, बेसिकली इसको इस तरह कंक्लूड कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको लेके आगे चलते हैं। तो जनाब, बेसिकली क्या उम्मीद रह जाती है फेलियर के बाद। अच्छा, अब इन चीज़ों में ना कुछ लोग घुसते हैं स्टार्स को लेके, बुर्ज को लेके, जो हमारे जेमिनाई, कैंसर, इस तरह के बुर्ज होते हैं ना, इसमें मोस्टली लोग अपने आप को लेके चलते हैं और कहते हैं कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई सितारा होता है, या कोई ना कोई इदादे इल्म होता है, या कोई ना कोई ऐसा कोई कहते हैं ना कि सितारों का कोई ऐसे इल्म नुमारियात जिसको आप कह लेते हैं, या जिसको आप ये कहते हैं कि इल्म नजूम जिसको आप कहते हैं, तो बेसिकली लोग उसकी तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन समीन अगर तारीख उठा के देखें, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, तो बड़ी ज़बरदस्त सी हमें मिसालें मिलती हैं। हमारे ऐसे लेजेंड्स मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा हार के बाद फिर कामयाबी देखी। लेकिन वो कामयाबी कैसी देखते हैं, वो इस तरह देखते हैं कि उनके पास एक उम्मीद होती है, एक हल्की सी रोशनी उनके पास रहती है कि यार नहीं, ऐसी एक रोशनी मौजूद है जहाँ से ये आगे जा सकेंगे, और वहाँ से इनके पास हमेशा लोगों के साथ अच्छा रवैया करने का एक ख़ास सुझाव होता है। कभी कभार ऐसा होता है

जी तो सामिन, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है अपने कुछ जो स्पेशल हमारे पास आगे पीछे लोग होते हैं उनके रवैयों से, उनकी जो बेसिकली जो आदतें होती हैं, जो हरकत और सकनात होती हैं उनकी वजह से। स्पेशली हमारे नॉटिंगम में, यूके में, इंग्लैंड में अगर आप देख लें तो एक बड़ी ज़बरदस्त ये कॉमन सी बात पाई जाती है कि हम मोस्टली यहाँ पे अपने कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें हम बंधे हुए होते हैं और हम किसी की मदद नहीं कर पाते, बाहर से या हमारे होमलैंड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, कहीं से भी कोई भी हमारे पास आएगा तो वो एक बड़ी होप लेके आता है कि यार मैं नॉटिंगम में, इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में, कहीं भी जहाँ पे भी आप लोगों के अजीज़ वकारिब रहते हैं वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और वहाँ पे फलां बंदा मुझे टेक ओवर कर लेगा, फलां बंदा मुझे टैकल करेगा, ये एक उम्मीद रहती है उनको। लेकिन मैं ये क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देने का मेन मकसद ये है

एग्जाम्पल देने का सामीन मेन मकसद ये है कि लोग समझते मतलब ये वो एग्जाम्पल्स होती हैं या वो मिसालें दी जाती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं, और जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ हमारी ये मिसालें चलती हैं तो फिर हमारे पास जो उम्मीद होती है ना वो बंदों से लग जाती है, इनडायरेक्टली बंदों के साथ लग जाती है, यानी हम ना चाहते हुए भी हम ऊपर वाले का जो दामन है वो हल्का हल्का छोड़े देते हैं। कहते हैं ना राम तेरी गंगा मैली, लेकिन सिचुएशन ये है कि गंगा मैली नहीं है, गंगा बहुत पवित्र है, बहुत साफ है, बहुत पाक है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि उसमें जो स्नान करने वाले लोग हैं जो अपने गुनाहों का बोझ उतार के उस गंगा मैया में बहाते हैं या फिर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं, परवरदिगार भगवान बाबा जी वॉट एवर जीसस जिसका जो भी जिनको भी वो मानते हैं, तो हम एक बड़ी अजीब सी ना कश्मकश में जाते हैं। और अजीब सी कश्मकश कौन सी है, वो अजीब सी कश्मकश ये है कि हम इंसानों से उम्मीदें लगाना शुरू हो जाते हैं जब भी किसी इंसान को फेलियर आता है सामीन, और फेलियर के साथ जब कोई उम्मीद उसको नज़र नहीं आती तो उसको हमेशा लोग नज़र आते हैं कि फ़लां बंदा मुझे उठाएगा और मुझे इस ऑब्स्टेकल से निकाल देगा, फ़लां बंदा मुझे उठाएगा और मुझे इस ऑब्स्टेकल के उस पार ले जाएगा, फ़लां बंदा मुझे उठाएगा और मुझे इस मुश्किल से निकाल के एक डिफरेंट दुनिया में ले जाएगा। हाँ होता ज़रूर है कि ऊपर वाला कभी भी खुद ज़मीन पे नहीं आएगा, कोई ना कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान बना के भेजता है कि जो आपको उन मुश्किलात में से निकालते हैं। अब होता क्या है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि टेंशन नहीं लेनी, साइंस ये कहती है, बल्कि आप ये कह लें कि साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप टेंशन नहीं लेंगे तो आप एक्ट नहीं कर पाएंगे। टेंशन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एक्ट करना पड़ता है, और जब आप एक्ट करते हैं तो फिर अगर तो कुछ लोग होते हैं जो टेंशनों को सर पे सवार कर लेते हैं, जब टेंशनें सर पे सवार हो जाती हैं फिर उन लोगों के जो एक्ट होते हैं वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, यानी उन लोगों को नहीं पता चलता कि हमने इतना ज़्यादा कोशिश की, हमने इतनी ज़्यादा काविश की, और काविश करने के बाद हमारे पास जो चंद ज़राए निकले हैं, जो कुछ हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस निकली हैं जो सिचुएशंस ना चाहते हुए भी

जी बिल्कुल सामिन, जो सिचुएशंस ना चाहते हुए भी हमारी फेवर में नहीं आ रही, और जब इंसान की फेवर में कोई चीज़ नहीं आती तो इंसान को उस वक्त ये अंदाज़ा होता है कि अब मेरा फेलियर शुरू हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब हमारी फेवर में कोई चीज़ ना आ रही हो, कहते हैं ना कि जब आपकी मंशा से आपकी मर्जी से काम नहीं हो रहे होते फिर ऊपर वाले की मर्जी से काम हो रहे होते हैं, जब ऊपर वाले की मर्जी से काम होते हैं तो फिर बहुत ही ताकतवर काम होते हैं। वो एक हदीस कुदसी है ना, मैं बयान किए देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इरशाद है कि इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, बस तूने कंप्लीट कर दिया उसको जो मेरी चाहत है, या तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत के हवाले कर दिया तो मैं तुझे बख्श दूंगा जो तेरी चाहत है, पर अगर तूने इसमें तगोदो की या तूने ना उम्मीदी की या ना मायूसी इख्तियार की, अल्लाह हमेशा माफ़ फरमाए मुझे क्रैक कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, तो फिर मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो डेफिनेटली ऐसी होता है जब आपकी मर्जी या आपकी मंशा के काम नहीं हो रहे होते फिर इसका मतलब है कि सामीन काम हो रहे होते हैं ऊपर वाले की मर्जी से, और जब ऊपर वाले की मर्जी से काम हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपकी फेवर में आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना अक्सर कि स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक एंड स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द टाइम ट्यून इन विद फज़ा 97.1 FM, क्योंकि आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के साथ मोटिवेशन और इस तरह अहवाल के जो जितने भी आपको सिचुएशंस या जितने भी आपको कुछ ऐसे सबक मिलते हैं, कुछ ऐसे लेसन मिलते हैं जिनको मैं लेसन समझता हूँ अपने लिए, अगर आप भी इसको लेसन समझते हैं तो फिर डेफिनेटली शेयर कीजिए ना अपने विचार मेरे साथ 01157100971 पे मैसेज करके। डेफिनेटली आपको ये बताते चलें कि आप इस नंबर पे लाइव कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, और आप शामिल हो सकते हैं हमारे साथ हमारी इस ज़बरदस्त प्रोग्राम विच इज़ गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

जी तो लिसनर्स, ये था जनाब जबरदस्त टॉपिक, इसी पे मेरी आज की डिस्कशन है और इसी पे मेरी सारे सेगमेंट भी चलेंगे। डेफिनेटली हम नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट जो हमारा चंक है उसमें हम पर्सनैलिटी ऑफ द डे, और आज मेरे पास जो पर्सनैलिटी है वो भी ऐसी हैं जो बार बार फेल हुई हैं। डेफिनेटली मैं कई बार इनको मैं अपने प्रोग्राम में इनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज के हवाले से जो हमारा टॉपिक है स्पेशली के होप आफ्टर फेलियर, दिस इज समथिंग यूनिक, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज की जो देखेंगे आप उसमें आप डेफिनेटली कुछ करेंगे और डेफिनेटली ट्रैक्स तो काफ़ी आपने इंजॉय किए इसलिए ट्रैक्स भी कम होंगे, लेकिन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहेगा। सो इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि अगर आप ट्यून इन हो चुके हैं फजा 97.1 FM पे, डैप पे आप हमें फजा के नाम से सर्च कर सकते हैं, और आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि always fasten your seat belts and do not use your mobile phone while driving.

जी तो डियर लिसनर्स ऑफ रेडियो फजा 97.1 एफएम, एक बार फिर से जनाब आपको थोड़ा सा तरोताजा किए देते हैं। आपको मौसम की सूरत हाल बता दूं कि आज की वेदर सिचुएशन क्या है। वैसे तो प्रोग्राम के स्टार्ट में डेफिनेटली आपने सुनी होगी, आज की वेदर सिचुएशन है जनाब 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 11 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। अभी कुछ देर पहले हल्की फुल्की बारिश के ही मुकामात पे हमारे नॉटिंगहमशायर में हुई है, लेकिन मोस्टली जो वेदर है वो सनी है, यानी धूप निकली हुई है। फिजा में ह्यूमिडिटी का लेवल जी सिर्फ 6% है, यानी शाम तक बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। और ये जो आपके पास हल्की सी गर्मी है ये कदरे बेहतर हो जाएगी इवनिंग में, यानी ऑलमोस्ट 17 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। इसके अलावा रात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि टुनाइट विल सी क्लियर स्पेल्स एंड एरियाज ऑफ वेरिएबल क्लाउड्स ड्रिफ्टिंग इन फ्रॉम द वेस्ट, अ फ्यू वेल स्कैटर्ड शावर्स विल आल्सो ड्रिफ्ट इन फॉर सेम, ओवरऑल मिड चिल्ड नाइट विल बी अहेड। जी बिल्कुल, रात के हवाले से ये जनाब सिचुएशन है, ये विशेष टिप्पणी मेरी नहीं है, इट्स अ वेदर फॉरकास्ट। और आज के हवाले से जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप प्लान करें अपने नॉटिंगहमशायर से बाहर जाने का, या आपकी सुबह की बिजनेस मीटिंग है, कोई बिजनेस ओरिएंटेशन है, या आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं आप, तो दिस द बेस्ट टाइम, आप इंजॉय करेंगे इस ज़बरदस्त से मौसम को। अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्त से हम सफ़र होंगे आपके तो फिर तो बहुत बेहतर है। अगर रास्ते में आप जाएंगे तो आपसे गुजारिश है कि अपनी सीट बेल्ट, मोटरवे पर स्पेशली सीट बेल्ट पहन के रखिएगा, ओवर स्पीड मत होइएगा, कहीं टेस्को पे या कहीं रुक के अगर आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं या रात को ड्राइव करते हुए आपको नींद नहीं आती तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नींद आती है तो फिर एस्प्रेसो के डबल शॉट या फिर हल्की फुल्की कोई एनर्जी ड्रिंक लाजमी लीजिएगा साथ। लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि इतनी गहमा गहमी वाली जो हमारी ज़िंदगी है, इतनी पुरफितन जो हमारी ज़िंदगी है हमारे नॉटिंगहमशायर में, कोशिश करें कि आप एक या दो घंटे का नैप आज ले सकें, ताकि उसके बाद जब आप रात को ट्रैवल करें अपनी अगली मंजिल की तरफ यानी सुबह की तरफ, तो फिर आप चाकू चौबंद रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने मकासद में कामयाब हों। तो सामीन, टॉपिक है हमारा उम्मीद के बाद जो फेलियर यानी हार के बाद जो उम्मीद है वो कैसी होती है, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि होप आफ्टर फेलियर। तो जनाब होप, मैं जीत की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सबसे पहले जो है वो होप है। अच्छा, इसमें अब एक डिफरेंट सिनेरियो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, मैंने सोचा कि ये आपसे डिस्कस करूँगा। डेफिनेटली अक्सर जो होते हैं ना लोग, जिंदगी बड़े अजीब से मोड़ पे उनको ले आती है, और स्पेशली कई बार आपको भी ऐसे मोड़ पे लेके आई होगी जहाँ पे आपने ये सोचा होगा कि अब यहाँ से हर रास्ता बंद है, कहीं आप दोराहे पे तो नहीं खड़े हो गए, यहाँ पे कहीं दो रास्ते यानी सिर्फ राइट और लेफ्ट जाते हैं और आपको बिल्कुल रस्तों का तायुन नहीं है कि आपका जो रास्ता है वो कौन सा करेक्ट है, आपने किस तरफ जाना है। बज़ाहिर आपको हर जगह से जो भी सिचुएशन नज़र आ रही है वो क्लियर नज़र आ रही है, क्लियर स्पेल्स नज़र आ रहे हैं, हर तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। सामीन, इस जगह पे ऊपर वाले की साथ हमें अशरफुल मखलूकात बना के भेजा और अक्ल जैसी ताकत दी है, हमें सोचने समझने की ताकत दी। कुरान पाक में अल्लाह ताला की साथ बड़ा वाज़ह तौर पर कहते हैं कि तदब्बुर करो, हर चीज़ पर आपने तदब्बुर करना, सोचना है, समझना है कि हम ये कैसे कर पा रहे हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है सियाने कहते हैं ना, सियाने ये कहते हैं सामीन, अक्सर मैं सियाना कहता हूं तो आप मेरी तरफ देखते हैं, तो डेफिनेटली आपने मेरी तरफ देखा है, आप लोग भी सियाने हैं, अपने आप को कमतर मत समझिएगा बिल्कुल। एनीवे जोक्स अपार्ट, तो मैं बात ये कर रहा था कि सियाने ये कहते हैं कि जब आपके खुशकिस्मती के दरवाजे पे ना खुशकिस्मती की जो दस्तक है वो बड़ी हल्की सी होती है, बहुत नॉमिनेटेड होती है वो, लेकिन उसको पहचानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको पहचानने वाले जो लोग होते हैं, जो रहस्यकाई सूरमा होते हैं बेसिकली, जो आप ये कह लें बेसिकली कि जो वॉरियर होते हैं जिन्होंने जीतना ही जीतना है, जो फातह होते हैं, अक्सर होता है ना कि पुराने दौर में अगर देखे जाएँ तो जो जंगें थी या जो भी पुराने राजा पोरस देख लें, उसके बाद शेरशाह सूरी देख लें, या जितने भी हमारे जो महान योद्धा हुए हैं या महान जो जितने भी शक्तिमान लोग हुए हैं जिन्होंने जिंदगियां बदली हैं, उनको अगर आप देखें तो वो जिंदगी में बहुत बार उन्होंने फेलियर देखे हैं। अब शेरशाह सूरी एक बड़े फेमस
बरसगीर पाकोहिन यानी सब कॉन्टिनेंट के एक ऐसे ये सूरमा थे जिन्होंने गालबन कहा जाता है कि सिकंदर आजम को रोका था। पाकिस्तान में एक जगह है डिस्ट्रिक्ट झेलम के नाम से, उस पॉइंट पे आके सिकंदर आजम को आगे जाने से रोका था। और ये सिकंदर आजम के आगे तकरीबन 20 से 22 मरतबा जंग हार चुके थे और ये वो जंग थी जो उन्होंने जीती थी। अब बड़ी ज़बरदस्त एक बात इसमें ये है कि शेरशाह सूरी को गालबन ये जो स्टोरी है, ये जो रवायात हैं, ये मिलती हमें तारीख के कुछ ऐसे पन्नों में, कुछ ऐसे चौराहों में मिलता है तारीख के, तारीख के कुछ ऐसे झरोकों में मिलता है जहाँ पे हम अक्सर ये सोचते हैं कि अब यहाँ पे तारीख अपना क्या कुछ दिखाएगी। हम ये सोचते हैं कि तारीख हमें क्या बताएगी, लेकिन उस जगह पे तारीख एक ऐसा मोड़ लेती है, एक ऐसा नुक्ता उठाती है और फिर कमाल जाए कि जो हमारे बरसगीर पाकोहिन के जो जो नावल निगार थे जिन्होंने इस तारीख को रकम किया है, जिसको सुनहरे अल्फाज में कह लें आप या जिन अल्फाज में भी कह लें, कोई इशू नहीं है इसमें, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सामीन। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने बड़े चीदा से पहलू निकाले हैं। फॉर एग्जांपल शेरशाह सूरी का उन्होंने एक पहलू ये निकाला है कि वो एक गार में ना, लास्ट टाइम जब वो अपने जो फेलियर उन्होंने देखा, यानी जिस जीत से पहले वाला जो फेलियर था वो जब उन्होंने देखा, अब मैं सामीन आपको बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों ने ये सुना होगा ना कि जीत के बाद, मतलब फेलियर के बाद, नाकामी के बाद जीत होती है, होप किस जगह पे होती है, उम्मीद कहाँ पे होती है नाकामी के बाद। मैं वो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे क्योंकि बड़े ज़बरदस्त से, बड़े स्मार्ट से, बड़े खूबसूरत से जहन वाले, बड़े खूबसूरत से अक्ल वाले हमारे जनाब नॉटिंघम शहर के वासी हैं और जितनी भी हमारी साउथ एशियन की मंडी है इस चीज़ को समझेंगी डेफिनेटली।

0: और समझने के साथ साथ मुझे बतलाना भी जरूरी है, आपने बतलाएंगे कैसे, आप 01157100971 पे मैसेज करके मुझे आप बताएंगे कि आपने हमेशा बहुत ही समझदार लोगों के साथ रब्ता किया और आपके जो मैसेजेस हैं वो भी हमारे पास आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मैसेजेस भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि यू गाइज आर हेयर। जी बिल्कुल, एक ज़बरदस्ती चीज़ ये है कि जो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करता हूँ कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है और दोहराने के साथ साथ क्या करती है, वो आपको कुछ ना कुछ होप लाजमी देती है। और वो होप आपके पास कहाँ से आती है, वो होप आपके पास आती है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहने से। यानी अगर आप पॉजिटिविटी में कुछ ना कुछ समझेंगे, कुछ ना कुछ चाहेंगे या कुछ ना कुछ पहचानेंगे तो फिर पॉजिटिविटी में आपको वो होप नज़र आएगी। जी शेषा सूरी की बात करते हैं, हुआ कुछ यूँ कि जो लॉस इसका फेलियर था, इसके बाद इसने जीतना था, इसको होप कहाँ पे नजर आई, ये एक गार में छुप के बैठ के शेरशाह सूरी गालमन, और गार में छुप के बैठने के बाद इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यार अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, फौज ख़त्म होगी, हर चीज़ ख़त्म होगी, तबाह होगी हर चीज़, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो इन्होंने देखा कि गार में एक छोटी सी चूंटी है, कीड़ी जिसको आप कहते हैं ना, वो चूंटी शेरशाह सूरी के पाँवों के पास है और शेरशाह सूरी उसे देख रहे हैं बड़े गौर से। वो चूंटी क्या करती है, वो चूंटी वहाँ से दीवार तक यानी बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो 22 मरतबा गिरती है, और लेकिन 23वीं मरतबा वो एक ऐसी होप के साथ निकलती है और वो उस जो गार का दहाना है, जो गार का किनारा है, जो गार का बैंक है, उससे बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी को एक होप मिली। उस वक्त तक नाकामियां चल रही थी, 22 मरतबा जो बादशाह नाकाम हो चुका था एक दुनिया के बहुत बड़ा सूरमा के सामने, उसके पास होप क्या थी। उसने देखा कि अगर एक चींटी 22 मरतबा गिर के 23वीं मरतबा कामयाब हो सकती है, उसने अपना आप नहीं छोड़ा, उसने अपना जितने भी वसाइल थे बुरुएकार लाए, उसने दोबारा अपने आप को इकट्ठा किया, अपनी सारी मिट्टी जो उसने इकट्ठी की थी ऊपर जाने के लिए उसने दोबारा उसको सींचा, और उसके बाद पूरी रात शेरशाह सूरी ने यह देखा। उसके बाद सुबह जब उन्होंने अपनी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई ताकत, अपनी ख़त्म हुई फौज को दोबारा इकट्ठा किया, गैदर किया, और उसके बाद एक ज़बरदस्ती चीज़ उन्होंने सोची, ज़बरदस्ती प्लानिंग की, थोड़ी सी अपनी प्लानिंग को चेंज किया, और उसके बाद उनके पास जीतने के कोई चांसेस नहीं थे लेकिन उनके पास एक स्ट्रांग होप थी। अब सिचुएशन क्या बनती है सामीन, होप जब आप पॉजिटिव लग जाती है ना, फिर यहाँ से आगे अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपना तवक्कल दे देती है, और अल्लाह की ज़ात कहती है ना कुन, हर चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको तवक्कल अता कर देती है, और तवक्कल में क्या होता है कि ये नहीं कहना कि जो लॉस हुआ वो हमारी किस्मत में था, अल्लाह ताला की ज़ात डेफिनेटली मुख्तलिफ सपारों में भी, कुरान पाक में भी, और मुख्तलिफ जो वेद हैं उनमें भी जो भी हैं, जो भी जिनको भी आप लोग मानते हैं, जो हमारी साउथ एशियन कम्यूनिटी है उसमें सारों में ये चीज़ बड़ी वाजह है कि आपके हाथों के कसम है। सामीन बहुत ही खूबसूरत सी गपशप हमारे साथ साथ चलती रहेगी, टॉपिक हमेशा जहन में रखिएगा, टॉपिक है जनाब उम्मीद आफ्टर नाकामी, यानी होप आफ्टर फेलियर। सो स्टे ट्यून्ड,
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
0: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
0: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
4: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
5: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
6: हजार 97.1 FM।
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिर खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अता कर रही हूँ, उसे खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम है जनाब उन तमाम समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे। डैप आप हम फजा के नाम से सर्च कर सकते हैं और सुन सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप लाइव सुनना चाहते हैं डेफिनेटली, आप लाइव सुनने के लिए क्या करेंगे, एड्रेस बार में जाएंगे और live.radiofaza.co.uk टाइप करेंगे और उसके बाद आप प्ले करेंगे तो यही आवाज़ ठहरेगी आपकी समातों की नज़र। अरे हाँ, बात हुई जाती है जनाब ऐप की, ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे, आप जाएंगे गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल पे, एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन बीच या येलो कलर में लिखा हुआ फजा आपके सामने आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए और जब आप प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी समातों की नजर। आपको कहते हुए गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। और आप लोग जानते हैं बेहतर कि जनाब आप लोगों के लिए मेरी गुड मॉर्निंग कैसे गुड होती है जब आप लोग सुनते हैं 97.1 एफएम को और आपकी समातों की नजर होती है मेरी आवाज। जी बिल्कुल, ब्रेक से पहले जनाब हम डिस्कस कर रहे थे आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा दकीक सा और बड़ा जबरदस्त सा टॉपिक है और इसमें आपकी जो विशेष टिप्पणी है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो राय है आपके जो विचार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखता हूं कि आपकी जो सोच की धारा है वो किस सिमत में बहती है, देखना जरूरी पड़ेगा क्योंकि अक्सर सियाने कहते हैं अरे देखिए, जब मैंने सियाना कहा तो फिर आपने मेरे को देखा अरे आप लोग भी सियाने हैं। एनीवे जनाब ये तो तंज़ो मज़ाक का सिलसिला हल्का सा चलता रहेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का सेगमेंट लिए मैं हूँ आपके साथ। टॉपिक है जनाब आज का, एक बार फिर से मैं दोहराई देता हूँ कि होप आफ्टर फेलियर, या जो हारना है उसके बाद की उम्मीद, यानी जीतने से पहले की उम्मीद आप कैसे लगाएं। तो जनाब हम डिस्कस कर रहे थे शेरशाह सूरी के हवाले से कि 22 मरतबा उस ट्यूनिटी ने गार का जो दाना है वो क्रॉस नहीं कर सकी, 23वीं मरतबा वो गार का दाना क्रॉस कर गया और वहाँ से शेरशाह सूरी ने सबक लिया कि अगर एक बेजान जानवर, छोटा सा कीड़ा, अल्लाह ताला की मखलूक है जिसके पास अक्ल भी नहीं है, जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, उसने एक बड़ी ज़बरदस्ती हिकमत अमली अपनाई और उसने अपने आप को गार से बाहर निकाल लिया, तो फिर मैं क्यों नहीं ये जंग जीत सकता। और डेफिनेटली फिर 22 बार वो जब हार चुके थे, समीन ये वो पॉइंट है जहाँ पे होप आती है जीतने की। बज़ाहिर देखा जाए तो शेरशाह सूरी वो हार चुके थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही बाकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, अपनी सारी जो मलबा था फौज का वो उठाया, 2 या 3 दिन बेहतरीन हिकमत अमली की प्लानिंग की और उसके बाद जब चढ़ाई की तो फिर जेहलम का वो मुकाम था, डिस्ट्रिक्ट जेहलम का गालिबन पाकिस्तान में ये जगह है जहाँ पर शेरशाह सूरी ने सिकंदर आज़म को ब्रेक लगा दी थी। अब यहाँ से हम आगे अगर चलें तो यहाँ पे हम तवक्कल भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप उम्मीद करते हैं ना, पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से जब भी आपने उम्मीद करनी है, प्रार्थना करनी है, अपनी दुआ मांगनी है, कुछ भी मांगना है आपने, आपने हमेशा पॉजिटिव उम्मीद के साथ और इस उम्मीद के साथ मांगना है कि ऊपर वाले ने आपको देना ही देना है। जब आप मांगे तो देगा, डेफिनेटली वो देगा, लेकिन ऊपर वाले की ज़ात को ये बेहतर पता है कि उसने कब किस सिचुएशन में आपको उतार करना। हो सकता है कि जब आप ये सोच रहे हों कि इस वक्त जो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको पाउंड चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको ILR चाहिए, आपको होम ऑफिस के कंप्लाइंसेज हैं, आपका बिजनेस तबाह हो चुका है, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ऊपर वाला बेहतर जानता है कि मे बी इस वक्त ये चीज़ या इनमें से कोई एक चीज़ मिलना आपको, वो आपके लिए सफलता का निशान नहीं हो सकती, वो आपके लिए कामयाबी का निशान नहीं हो सकती। और जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे पास जो रहने वाले ऑप्शंस हैं दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि हमने बाकी रहना है और हमने अपनी जितनी भी काविशें उनको साथ लेके चलना है, तो फिर सामीन उम्मीद में ऊपर वाले की ज़ात तवक्कल जोड़ देती है। और जब तवक्कल आपके पास आ जाता है, क्योंकि होती ये भी अता है, अल्लाह ताला की ज़ात ने जब तक देना है उसी वक्त तक ही देना है आपको, और जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता कर देती है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको समझा देती है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेशुमार पर्दों में से हटा के किसी ऐसी ज़ात की तरफ ले जाती है, किसी ऐसे बंदे की तरफ ले जाती है, किसी ऐसी पर्सनैलिटी की तरफ ले चलती है जो पर्सनैलिटी आपके लिए बज़ाहिर तो फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन उससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा आता होता है कि आप हैरान हो जाते हैं, आप कई बार परेशान हो जाते हैं कि यार ये बंदा मेरे काम आ सकता है। तो वो بیسیکلی جو فیلئر کے بعد کی امید ہے نا, اوپر والے کی ذات پھر آپ کے رشتے بھی سنوارتی ہے, آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی مضبوط کرتی ہے. اور مضبوط کرنے کا سب سے جو امپورٹنٹ وے ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ذریعہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اوپر والا آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے, پھر ان گنت بلیسنگز عطا کرتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہوپ کے ساتھ ساتھ ہوپ کے ساتھ ساتھ امید کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو مین زندگی ہے, جو مین کورس ہے آپ کے پاس, وہ آپ کے پاس توکل کا بھی رہ جاتا ہے. اس کے بعد آپ زندگی کی انگنت کامیابیاں سمجھتے ہیں. جو سمعین خوبصورتی گپ شپ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ جناب, پرسنالٹی آف دا ڈے. اور آج کی جو پرسنالٹی ہے میرے ساتھ وہ بھی کچھ ایسی ہیں جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے, اور ٹاپک کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ایک زبردستی جناب ہماری بڑی پیاری سی لسنر ہے فاخرہ مرزا جی, تھینک یو ویری مچ فاخرہ جی, نے ٹیون ان کیا اور آپ کی جو بات ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں لاکھوں میں ایک بات ہوتی ہے, اور واقعی ہی لاکھوں میں فاخرہ جی کی ایک بات ہوتی ہے. انہوں نے ایک گیت کی فرمائش کیا, ارے فرمائش کیا, یہ تو حکم ہے ہمارے لیے. لیکن ایک سیگمنٹ ہے فاخرہ جی بڑا زبردست تھا کہ جو کلونل سینڈرز ہیں بیسیکلی کون ہیں, جو کے ایف سی کے فاؤنڈر تھے. یار تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1009 مرتبہ وہ ناکام ہوئے ہیں, اور پھر ابو 60s یعنی 64-65 کی ایج میں جا کے انہوں نے کامیابی دیکھی ہے. تو ہمارے آج کے ٹاپک سے یہ بہت ہی زیادہ زبردست طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں. انجوائے کیجئے, سنیے اس زبردستی موٹیویشنل سکسیس سٹوری کو, رہیے فضا 97.1 FM کے ساتھ. آپ کی وشیش ٹپ میں آپ کی رائے میرے ساتھ رہے گی, اس ٹاپک کے اس پار نہیں سیگمنٹ کے اس پار پھر آپ سے گپ رہتی ہے. سو اسٹے ٹیون, انجوائے گریٹ سکسیسفل اسٹوری آف مسٹر سینڈرز جو کے ایف سی کے فاؤنڈر ہیں, اور اس کے بعد آپ ملتے ہیں پھر گپ شپ کرتے ہیں. اسٹے ٹیون اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.
1: When Colonel Sanders was only 6 years old, his father passed away. Because his mother had to work very hard to provide for the family, she was gone all day, and the young boy was left home to take care of his siblings. So at the age of 6, he started cooking and taking care of the family. And by the age of 7, he was already a skilled cook. When he was 10, he began working on a farm. 2 years later, his mother remarried to a violent man who didn't like the kids. Sanders dropped out of school and at the age of 13 left home and took a job painting horse carriages. At 15, he even joined the US Army. When he was 18, he got married and started a family. He had a son and 2 daughters, but sadly his son died very young and the marriage fell apart soon after. Colonel Sanders spent the first half of his life working many odd jobs. He was selling insurance, he was selling tires, he was a farmer, steamboat pilot, secretary, lawyer, he was operating a ferry boat, and many other. He was known for not being able to keep a job for a longer period of time, so he was fired very often. So if you think you haven't found your calling yet, it wasn't until the age of 40 that Colonel Sanders began selling his chicken dishes inside a gas station. And his business became more and more popular that it became a 140-seat restaurant. In the next decade, he developed his secret recipe for frying chicken. But at the age of 65, his restaurant went broke. And for the first time in his life, he had to sign for Social Security. So he was 65, retired, and broke. But he never stopped believing in his dream. So he didn't give up. He used his first Social Security check of only $105 and traveled across the United States in search of potential business partners, offering them his secret recipe. It was one of the hardest periods of his life. He was living in his car, surviving with little food, facing rejection after rejection. But giving up was never an option. Colonel Sanders was rejected 1,009 times before his chicken recipe was accepted only once. Soon, Colonel Sanders had 600 franchises selling his Kentucky Fried Chicken. But the company was expanding rapidly, and it became a bit overwhelming for the old Sanders. So he sold his company for $2 million, but remained as a spokesperson. He died at the age of 90. Today, there are over 20,000 KFC outlets around the world. As you can see, he was rejected more than 1,000 times before he sold his recipe, and almost his entire life he failed at every job he tried. One has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. Most people get disappointed and give up way too soon. They just stop believing they can be successful when they reach a certain age. But that kind of thinking is wrong. It doesn't matter if you're in your 20s or in your 50s. It's not too late for you. You can do the most amazing things if you just believe. And don't dwell on your past failures. They don't determine your future. What if Colonel Sanders gave up when he was living in his car, ashamed, rejected, broke? Thankfully, he believed in himself so much that in his 70s, he became the founder of a billion-dollar brand. So remember, you're never too old to achieve success in life. Believe in your capabilities. You're an endless human being. You're not late. Just start. So, what's your story?

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: खुशियों को खा गई।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: सुनते रहो फजा 97.1 FM।
1: You are listening 97.1 FM.

Assalamu alaikum, namaste, satsyakal, hello, hello, hello, a very beautiful, exciting, plus charming morning. आप सभी लिसनर्स के लिए, सिर्फ लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त, वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा, आपका अपना कम्फर्ट टेस्ट दीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे. सो डियर लिसनर्स, जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 FM ही है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन, और फिर प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं मज़े मज़े के टॉपिक्स, दीगर मामूलात ज़िंदगी की गपशप, हर दिन के हवाले से डिस्कशन, और फिर उसके साथ साथ मज़ेदार से ट्रैक्स. सो इन तमाम से चीज़ों का डिपेंड इन्हसार सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंदीदगी पर किया जाता है. सो इसीलिए मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में पूछती हूँ कि आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं अच्छे अच्छे से टॉपिक्स, स्पेसिफिक सॉन्ग्स या फिर कुछ भी जो आप चाहते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि दीवा डायलॉग हमारा नहीं बल्कि आपका प्रोग्राम है जहाँ हम वो तमाम से चीज़ें शामिल करना चाहते हैं जो हमारे लिसनर्स को हैं पसंद. सो वेल लिसनर्स, अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने भी अभी तक इस खूबसूरत दिन का आगाज नहीं किया, जो कि आपका मुंतजर है इस उम्मीद के साथ कि आप इस दिन को शुरुआत करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे और कुछ अलग और मुनफरिद करके दिखाएंगे. सो वेल लिसनर, जिस तरह से ठीक मैं इस प्रोग्राम का आगाज अभी आप सभी के साथ कर रही हूँ, आप भी अपने खूबसूरत दिन का आगाज मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपकी होस्ट हूँ बल्कि हूँ आपकी दोस्त. सो लिसनर्स, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने सोच विचार, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं और आज के दिन के हवाले से क्या करने का इरादा रखते हैं. सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपने ओवरऑल प्लानिंग तो की हुई होती है कि अच्छा आज के दिन मैं ये सब काम करूंगा, लेकिन आप ये सोच नहीं पा रहे होते, आई मीन टू से डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि अच्छा मैं कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बाद में करूं, अपने कामों को किस तरह से तरतीब दूं, कहां से शुरू करूं और कहां से ख़त्म करूँ. सो अगर आप भी इस कशमकश या फिर कन्फ्यूजन का हैं शिकार, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा हैं आपके साथ यहाँ मौजूद. आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी तमाम तरह कीमती थॉट्स, इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर थोड़े से भी कंफ्यूज हो, होता है ना समटाइम्स इंसान को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, होती तो बहुत सिंपल सी हैं लेकिन हमारे लिए वो चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी मुश्किल. सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ आपको बॉदर कर रहा है या फिर आप किसी भी चीज़ को लेकर हैं थोड़े से भी कन्फ्यूज, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. वेल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपकी समस्या के मुताबिक बहुत सी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दूं और आपकी बात गौर से ध्यान से सुनूं. सो वेल लिसनर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ. जी तो लिसनर्स, अगर आप बनना चाहते हैं दीवा डायलॉग के इस सफ़र का हिस्सा, तो किस तरह से बन सकते हैं आप हमारे इस सफ़र का हिस्सा, आपको हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा छोटा सा नंबर है जिसे कर लेना है सेव. सो हमारा नंबर है जी 01157100971. सो जल्दी से कर लीजिए इस नंबर को सेव, क्योंकि ये ना सिर्फ एक नंबर है बल्कि है एक ऐसा रास्ता जो आपको मुझसे और मुझे आपसे जोड़ता है. सो इस नंबर के थ्रू आप मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं भी आपसे अपनी तमाम तर डिस्कशन करूंगी, अपनी तमाम तर बातें शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा इस नंबर पर. इस नंबर पर जाके आपने अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, बस लिखकर भेज देना है. सो ये हम पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम उसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं. सो लिसनर्स, आप ना सिर्फ हमसे अच्छी अच्छी पीस ऑफ एडवाइस ले सकते हैं बल्कि आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं. सो आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं या फिर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक, कोई न्यूज सीरीज जो हम स्टार्ट करें.
साथ ही साथ आप हमें अपनी फरमाइशें भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ट्रैक्स पसंद हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर तरह की रिकमेंडेशंस को प्रोग्राम में शामिल करूँ। सो अगर आप करना चाहते हैं अपने किसी प्यारे से चाहने वाले को कोई गाना डेडिकेट, तो उसके लिए भी आपको 01157100971 इस नंबर पर है जाना। सो वेल लिसनर्स, ये तो ज़रा बात हो गई कि किस तरह से आप अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि आप अपनी कीमती सोच हमसे शेयर कर सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि आप किस तरह से हमारी इस खूबसूरत सी सुंदर सी आवाज़ को सुन सकते हैं। सो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट को लॉग इन करना होगा। अच्छा, अब हमारी वेबसाइट क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, www.radiofaza.com.uk। जी तो लिसनर्स, ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM पर अब कौन से नए इवेंट्स हैं आने वाले, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला, सो ये हर तरह की मालूमात आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पर।

सो लिसनर्स, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान सा है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आपको सिंपली जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहाँ जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, ये जो पर्पल कलर का आइकन है, यही है हमारी एप्लीकेशन का आइकन। सो आपने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कर लेना है इसको इंस्टॉल, और फिर बन जाना है हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने बारी बारी एक एक आपसे कर दिया है शेयर। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमारी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सो वेल लिसनर्स, जैसे कि आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे मींस द सेकंड डे ऑफ द वीक। सो सबसे पहले आपका हाल चाल पूछ लेती हूँ, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे। सो वेल लिसनर्स, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मगन हैं तो इट्स अ रियली गुड पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मगन नहीं होते, इट मीन्स कि उनके पास कोई भी पर्पस, कोई भी मोटिव नहीं होता, और बिना मोटिव के ज़िंदगी बिताना कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप एक मंजिल पर चलते चले जा रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है और कहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा। सो कुछ इसी तरह से है, आपको भी अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मोटिव ज़रूर चाहिए होता है, और फिर कोई ऐसी चीज़ जो डेली बेस पे आपको मोटिवेट करे कि आप एक कदम आगे बढ़ें। इसीलिए मोस्टली सम ऑफ टाइम्स जब मैं किसी भी सोशल गैदरिंग में जाती हूँ या मैं कहीं भी लोगों से मिलती हूँ, सो मैं जब भी किसी से पूछती हूँ कि अच्छा आपके फ्यूचर को लेकर क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, तो मोस्टली लोगों का यही कहना होता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई प्लान नहीं है, हम जस्ट फ्लो के साथ चल रहे हैं। सो आई वॉज वंडरिंग कि आखिर कोई कैसे फ्लो के साथ चल सकता है। आई मीन टू से कि अगर आपने यही नहीं सोचा कि आपने आने वाली ज़िंदगी में क्या करना है, तो आप किस तरह से कामयाब इंसान बन सकते हैं। इस तरह तो ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी की लहर आपको कहीं किसी ऐसे पॉइंट पर ले जाए जहां आप जाना ही ना चाहते हों। सो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से मोटिव का होना बेहद ज़रूरी है एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी के लिए। सो वेल लिसनर्स, बात कर लेते हैं अपने उन सभी लिसनर्स की जिन्होंने तो अभी तक अपने इस दिन का आगाज कर लिया है। वो हैं जी अपने ऑफिस, कारोबार या फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ रवा दवा। सो अगर आपका भी शुमार होता है उन सभी लोगों में से, तो आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने सफ़र को बना सकते हैं मज़ीद खूबसूरत। सो आप अपने सफ़र को रेडियो फजा 97.1 FM के संग बना सकते हैं खूबसूरत। सो आप हमें फजा टैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं, वहाँ हमारा साथ दे सकते हैं। सो जल्दी से वहाँ जाके हमारा साथ दीजिए और बना लीजिए अपने सफ़र को मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद यादों से भरपूर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कभी कहीं जा रही हूँ या फिर ड्राइव कर रही, क्योंकि मैं तो ड्राइव करती नहीं हूँ। सो हमेशा यही है कि मैं तो पीछे बैठती हूँ और जो भी कोई ड्राइव कर रहा हो। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ड्राइव कर रहे हों और साथ में आपको खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिलें, कुछ ऐसी आवाज़ें जो दिल को भाती हों, कुछ ऐसी आवाज़ें जो आपको आपकी ज़िंदगी के किसी पुराने मोड़ से कनेक्टेड करती हो। सो अब आप सोच रहे होंगे ऐसी आवाज़ें कौन सी हैं, तो ऐसी आवाज़ें हैं म्यूज़िक की। सो हर गाना अपने ही एक नोयत की थिंकिंग रखता होता है, और हर गाने के पीछे उसकी एक प्रॉपर थ्योरी, फिलॉसफी मौजूद होती है। सो बाज़ूकात ऐसा होता है, मेरे साथ तो है, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब मैं कभी कोई पुराना गाना सुनती हूँ या कोई ऐसा गाना जो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मैं सुना करती थी, और फिर ऑब्वियसली बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम उन गानों को भूल जाते हैं। लेकिन जब अचानक से कभी ज़िंदगी में वो गाने हमारी नज़रों के सामने आते हैं, तो वापस से इंसान एक मिनट के लिए उसी दौर में, उसी सिनेरियो में खो जाता है। सो मैं अक्सर बैठ के जब गाना सुन रही होती हूँ तो साथ ही साथ मैं सोचना शुरू कर देती हूँ कि अच्छा जब फर्स्ट टाइम मैंने ये गाना सुना था तो उस वक्त मेरे माइंड में क्या चल रहा था, उस वक्त मेरी ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, आज ज़िंदगी कितनी बदल गई है। सो बस
ऐसे करते करते मैं थोड़ा सा पास्ट पे खो जाती हूँ। सो द लिसनर्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी भी गाने के साथ, किसी सॉन्ग ट्रैक के साथ इस कदर वाबस्ता हो, इस कदर आपको उनसियत हो कि जब जब आप वो गाना सुने तब तब आप अपनी जिंदगी के किसी और ही सिनेरियो में पहुंच जाएं? वेल लिसनर्स, अगर आप मेरी इस बात से कर रहे हैं रिलेट, सो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं 0115710091 इस नंबर के थ्रू। सो वेल लिसनर्स, प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं क्योंकि गपशप का सिलसिला तो आपका और मेरा चलता ही रहेगा। बातें इतनी हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम बातें करते चले जाएँ तो ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी बातें कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सो प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से ट्रैक के साथ। सो ये गाना आजकल मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा दिल करता है कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो ही मैं अपने लिसनर्स को भी सुनाऊं। सो आप भी सुने ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक। ट्रैक के उस पर होती है आपसे मुलाकात। सुनने के बाद आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा।

सी तो लिसनर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है इस वक्त एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, सो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तरह सुनते हुए समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 FM लाइव स्टूडियो से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त जैनब फातमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग। जी तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक अच्छा लगा होगा। वेल, अगर आपकी भी है कोई सजेशन या आप चाहते हैं कि हम आपके पसंदीदा ट्रैक्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, सो उसके लिए आप हमें सिंपली बता सकते हैं। भरपूर कोशिश की जाएगी कि आपके पसंदीदा ट्रैक्स को ही हम प्रोग्राम में शामिल करें। सो वेल लिसनर, जैसा कि आज का मौसम है लाइट रेन एंड अ मॉडरेट ब्रीज, सो इस हवाले से भी होता है ना कि जब मौसम थोड़ा सा भी अच्छा या खूबसूरत होता है तो हमारा दिल करता है कि हम कुछ अच्छे अच्छे से इमोशनल गाने सुने। वेल, आप सबका तो नहीं पता लेकिन अक्सर औकात मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब कभी बारिश होती है या फिर मौसम हल्का सा क्लाउडी होता है तो मेरा दिल करता है कि क्यों ना आज ज़रा रूटीन से हटकर अपने म्यूज़िक को चेंज किया जाए। जैसा कि नॉर्मली रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सुनते हैं सिंपल से गाने, तो जब कभी मौसम बहुत अच्छा होता है तो मेरा दिल करता है कि क्यों ना कोई हम ऐसा गाना सुने जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। सो अगर आपके भी कोई ऐसा गाना हो या फिर कोई ऐसी फरमाइश हो तो आप हमें बता सकते हैं, तो आज के वेदर के अकॉर्डिंग उसे ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो वेल लिसनर्स, बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। जैसा कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे मीन द सेकंड डे ऑफ द वीक, सो मंडे को जो हल्की सी हिचकिचाहट होती है या फिर जिसे हम अपनी लेजीनेस कह सकते हैं, जो हमें थोड़ी सी फील होती है कि अच्छा दोबारा से हमें एक हैक्टिक वीक स्टार्ट करना है या फिर एक हैक्टिक रूटीन को शुरू करना है। सो ट्यूसडे को आकर वो हमारी जो एक सोच होती है या फिर जो हमारा वो माइंडसेट होता है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है, और ट्यूसडे को आकर आई फील लाइक कि ऑफिस आना इस कदर मुश्किल नहीं लगता जिस कदर मंडे को लगता है। सो आज तो आपने सबने डिसाइड कर ही लिया होगा कि अब इस आने वाले हफ्ते में आप क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मज़ीद बेहतर बनाएंगे, और क्या ऐसे इकदाम हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब, क्योंकि आपको मालूम है कि दीवा डायलॉग में हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नया एक मुनफरिद सा टॉपिक। सो कल की तरह हमारा आज का टॉपिक भी है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक। सो कोशिश तो मैंने पूरी की है कि मैं आपके साथ वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो कि आपकी मालूम में इजाफा करे। सो आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सो आप ही बता सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या होगा, एनी गेसेस? सो उससे पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गाना जो कि आज के मौसम की मुनासिबत से बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। सो इस खूबसूरत ट्रैक के उस पर हम ज़रा आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM।

लिसनर्स, गाना हमारा थोड़ा सा इमोशनल था, लेकिन आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना। अक्सर का जब भी कभी ऐसा मौसम होता है, हल्का हल्का सा क्लाउडी या फिर हल्की सी बूंदाबांदी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना सुनना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी अपने साथ साथ ये गाना सुनाया जाए। सो दे लिसनर्स, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। सो हमारा आज का टॉपिक भी कल की तरह बहुत ही यूनिक है। सो कल हमने बात की थी अनयूजुअल ट्रेडिशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें हमने कोशिश तो यही की थी कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को कवर कर सके, जिनमें मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ क्या ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनको फॉलो करती हैं, जिन नॉर्म्स को वो अप्लाई करती हैं, लेकिन वो उनके लिए तो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बट हमारे लिए वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल होती है, या फिर क्योंकि हमने कभी उन चीज़ों को ना किया होता है ना देखा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ओह ये भी भला किसी कल्चर का हिस्सा हो सकती है। सो आपका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा द बेस्ट थिंग इज़ जो मुझे फीडबैक में लगी वो ये थी कि आप सबने भी अपने फैमिली नॉर्म्स या फिर अपने ट्रेडिशंस वगैरह मुझसे शेयर किए, विच इज़ क्वाइट नाइस प्लस डिफरेंट। सो द लिसनर्स, आज का हमारा टॉपिक है कलर एंड देयर हिडन साइकोलॉजी। सो आज हम बात करेंगे कलर्स के ऊपर। सो हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम इससे लिटरली अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, लेकिन शायद कभी हम डीपली नोटिस नहीं करते, क्योंकि कलर्स तो हमारे आसपास इर्द गिर्द आमने सामने हर जगह ही मौजूद होते हैं। जी तो आज हम बात करेंगे कलर्स की, कलर्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या कलर्स सिर्फ चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए होते हैं, या फिर आप कलर से अपने मूड को, अटेंशन को, डिसीजंस को और भी बहुत सारे ज़िंदगी के अनासर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें कि अगर आप किसी भी एक रूम में एंटर होते हैं, अगर वॉल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्लू हैं, तो आपका रूम कितना काम फील होता है, आपको यूँ लगने लगता है कि इन्वायरमेंट कितना डीप क्लीन और कितना खूबसूरत है। और अगर आप ही की वॉल्स ब्राइट रेड कलर की हों, तो वो रूम कितना ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। आई नो कमरे तो दोनों हैं, लेकिन

येलो, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, पर्पल और भी बहुत सारे कलर्स की साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस को एक्सप्लोर करेंगे। सो लिसनर्स, आपने कहीं पर भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए भी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कलर साइकोलॉजी कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। हर इंसान का रिस्पॉन्स सेम नहीं होता। बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि आपका कल्चर, पर्सनल मेमोरीज, एक्सपीरियंस या फिर डिफरेंट तरह के सिचुएशंस अफेक्ट करते रहते हैं। हम किसी कलर को किस तरह से परसीव करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कम्युनिटी कैसी है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली कि हमारी सोच कैसी है। So basically today we are not going to say red means this and everyone in the world will exactly feel the same. Instead of we will say what occasions do people commonly have and different colors they have. So listeners, ab zara start karte hain apni is colorful si journey ko. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द फर्स्ट कलर रेड। अब हम बात करेंगे इस कलर की और साथ ही साथ इसकी हिडन साइकोलॉजी की। सो रेड एक ऐसा कलर है जो इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड का यूज़ स्टॉप करने के लिए होता है। वार्निंग साइंस में भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है, और बाज़ुकात जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उनमें भी रेड कलर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। अच्छा, आप सब ने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों होता है, वाई? बिकॉज रेड विजुअली स्ट्रॉन्ग और हाईली नोटिसेबल कलर है। साइकोलॉजिकली रेड को कॉमनली इनर्जी, एक्साइटमेंट, पावर और स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ एसोसिएट किया जाता है। यही एक वजह है इसीलिए एडवर्टाइजमेंट में भी रेड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, आप देखेंगे कि मोस्टली फास्ट फूड ब्रांड्स, सेल साइंस, प्रमोशनल मटेरियल और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ रेड बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। लेकिन रेड का इफेक्ट सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कभी कभार रेड मीन्स डेंजर, रेड मीन्स एंगर एंड रेड मीन्स वार्निंग। सो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम रेड कलर को डेंजर से, एंगर से, वार्निंग से एसोसिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई साइन ब्राइट रेड हो और उस पर वार्निंग लिखी हो तो नेचुरली हमारा अटेंशन उस तरफ जाता है। लेकिन अगर वही रेड एक ब्यूटीफुल ड्रेस या आर्ट वर्क में हो तो उसका इम्प्रेशन हमारी नज़र में टोटली डिफरेंट होता है, या फिर हम उस चीज़ को बहुत ही डिफरेंट तरह से परसीव करते हैं। सो लिसनर्स, आपका फेवरेट कलर रेड है या फिर नहीं? और जब आप रेड देखते हैं आपको सबसे पहले कैसा फील होता है? एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट या बस ठीक है, ओके, एक कलर ही तो है? आप भी अपनी कीमती राय हमसे शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर जो कि है 0115710091। अच्छा लिसनर्स, मैं अगर आपको पर्सनली अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो आई फील लाइक कि रेड इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट कलर। रेड बहुत ज़्यादा नोटिसेबल कलर है, और ये बात सच है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई चीज़ किसी को दिखा रहे हैं या फिर वो बंदा उस चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू करे या फिर ज़्यादा अटेंशन देकर देखें, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, उन बोर्ड्स पे, साइंस पे रेड कलर इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछें कि रेड कलर मुझे कैसा लगता है, तो रेड कलर मुझे बहुत ब्राइट लगता है, और आई फील लाइक कि एवरीडे यूज़ में मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी दीगर इस्तेमाल की ज़िंदगी में ये कलर ज़्यादा हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में थोड़े से काम, कंपोज और सिंपल कलर्स हों। सो मेरी पर्सनालिटी में रेड कलर का इफेक्ट ये है कि अगर मैं बहुत सारा रेड कलर कहीं देखती हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रेड ड्रेस देखती हूँ तो आई फील लाइक कि इट्स टू लाउड फॉर मी, मैं इसको नहीं वेयर कर सकती। या फिर अगर मैं देखती हूँ रेड कलर की लिपस्टिक, सो जैसा कि हम दीवाज, आप भी मे बी, हम सभी मेकअप तो यूज़ करते हैं, तो आप सब ने भी ये चीज़ फील की होगी कि जब हम देखते हैं रेड लिपस्टिक तो
और अगर हम सोचते भी हैं कि हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे माइंड में यही एक चीज़ आती है कि ओह नो, ये टू मच ब्राइट है, हमें कुछ लाइट अप्लाई करना चाहिए।

सो फॉर मी रेड इज़ टू मच ब्राइट, और मैं अपने एवरीडे यूज़ में कोशिश यही करूँगी कि ये कलर मुझे थोड़ा कम ही दिखाई दे. सो वेल लिसनर्स, ये तो हो गया हमारा पहला कलर एंड देयर हिडन साइकोलॉजी. अब प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद खूबसूरत से ट्रैक को शामिल करने का. सो लिसनर बताइए आपको किस तरह का ट्रैक सुनना है, सिंपल इमोशनल या फिर थोड़ा सा स्वीट टोन. सो मैं सोच रही हूँ कि हमने थोड़े से इमोशनल गाने सुन लिए हैं तो क्यों ना एक स्वीट टोन गाना प्रोग्राम में शामिल किया जाए. सो ये एक प्यारा सा स्वीट सा गाना मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है. आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक. ट्रैक के उस पार हम वापस से कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को, और मैं आपसे मज़ीद बहुत सारे कलर्स शेयर करूंगी और साथ ही साथ उन कलर्स के पीछे छुपी उनकी हिडन साइकोलॉजी. सो स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM.

0: अच्छे। तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? मैंने सोचा कि हम काफ़ी सारे इमोशनल गाने सुन रहे हैं, तो क्यों ना कुछ खूबसूरत, कुछ स्वीट टोन सॉन्ग भी सुना जाए। सो इसके लिए मैंने ये गाना प्ले कर दिया। सो वेल लिसनर्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानेब, दोबारा से उसे कंटिन्यू करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कलर एंड देयर हिडन साइकोलॉजी, यानी कि डिफरेंट कलर से जुड़े वो डिफरेंट अनासर जो कि हमें मजबूर करते हैं या फिर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मूड को, हमारी पर्सनैलिटी को और हमारे ओवरऑल डिसीजंस को। सो वेल लिसनर्स, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। सो आपने कहीं भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। हम बस यूं गए और यूं आए। सो फिर कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर हम नेक्स्ट कलर को कंटिन्यू करेंगे जो कि है ब्लू। सो देखते हैं कि ब्लू हमारी साइकोलॉजी पर।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops. And take shorter showers, yeah? Because when we work together,
6: it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
0: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
9: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
9: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
9: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
10: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।

एंड वी आर बैक, वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी सुनने वाली समातों को खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं आपकी फेवरेट आरजे ज़ैनब फातिमा को और प्रोग्राम है डीवा डायलॉग, जो कि आपका ना सिर्फ फेवरेट है बल्कि है आपका कम्फर्ट प्लेस। सो वेल लिसनर्स, अब मूव करते हैं ब्लू की जानिब। सो बेसिकली ब्लू दुनिया का मोस्ट पॉपुलर कलर है। अच्छा, मोस्टली चीज़ें आपको ब्लू में मिलती हैं, जैसे कि स्काई ब्लू, ओशन ब्लू, रेनी डे ब्लू। ब्लू नेचुरली नेचर में ही बहुत नज़र आता है। सो साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस में ब्लू को कॉमनली कामनेस, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसी वजह से मैनी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी हमारे ब्रांड्स होते हैं उनमें ब्लू कलर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ब्लू का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि डिफरेंट शेड्स डिफरेंट फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं लाइट ब्लू। अच्छा, लाइट ब्लू सॉफ्ट और पीसफुल फील करवाता है हम सभी को, जबकि डार्क नेवी ब्लू सीरियस और प्रोफेशनल फील के साथ आता है। इमेजिन करिए एक कंपनी का लोगो नियॉन रेड हो और दूसरी कंपनी का लोगो नेवी ब्लू, दोनों के विजुअल पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट फील होगा। ब्लू क्लॉथिंग में भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल और प्रोफेशनल इम्प्रेशन देता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर किसी पर्सन की चाइल्डहुड मेमोरीज बीच से कनेक्टेड हैं तो हो सकता है कि ब्लू उसके लिए पीसफुल मेमोरीज क्रिएट करे। सो समटाइम्स वी डोंट जस्ट सी कलर, वी रिमेंबर थिंग्स थ्रू कलर। सो यही वजह है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कलर्स को बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। पर आई फील लाइक कि ब्लू एक बहुत कॉमन कलर है जो कि आपको हर जगह नज़र आता है, और ब्लू के बहुत सारे शेड्स हैं। और अच्छा, ब्लू में एक खासियत ये भी है कि अगर हम नियॉन ब्लू की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सेटल लुक देता है, जबकि अगर हम नेवी ब्लू की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क इम्प्रेशन क्रिएट करता है। सो यही वजह है कि अगर बाज़ औक़ात हमने किसी जगह में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म शो करना होता है तो हम वहाँ डार्क रॉयल ब्लू यूज़ करते हैं, और दूसरी जानिब अगर हमने किसी जगह ये दिखाना होता है कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पीसफुल है, काम है, तो हम लाइट ब्लू यूज़ करते हैं। और फिर बात आ जाती है इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस की। ये भी हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हों जिनको ब्लू कलर ना पसंद हो। अच्छा, आपकी पर्सनल चॉइस भी कलर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको शॉपिंग करनी है, यू वॉन्ट टू बाई सम न्यू क्लॉथ्स, लेकिन कुछ क्लॉथ्स आपको डार्क ब्लू कलर के दिख रहे हैं लेकिन आप बार बार ग्रीन की जानिब बढ़ रहे हैं, इट डजेंट मीन कि ब्लू इज अच्छा कलर नहीं है, बट माइट बी पॉसिबल कि आपको ब्लू नहीं पसंद। सो इस सूरत हाल में ब्लू एक बहुत अच्छा कलर है, पीसफुल है, काम है, बट स्टिल आपका डिसीजन अफेक्ट हो रहा है क्योंकि आपको वो कलर नहीं पसंद। सो वेल लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले कलर की जानिब, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कलर एंड देयर हिडन साइकोलॉजी। सो आज हम भरपूर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स को कवर करें, और आपसे मैं शेयर करूं कि किस तरह से मुख्तलिफ रंग आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ असरात मरतब करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट येलो। येलो को बहुत कॉमनली हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, वार्म और पॉजिटिविटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो अगर हम सनशाइन को इमेजिन करें, फ्लावर्स को इमेजिन करें, मॉर्निंग सनलाइट को इमेजिन करें, येलो नेचुरली ब्राइट और अटेंशन ग्रैपिंग बन जाता है। इसीलिए साइंस और विजुअल कम्युनिकेशन में भी येलो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। लेकिन येलो का एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि अगर कोई शेड बहुत ब्राइट या ओवर वार्मिंग हो तो कुछ लोगों को वो विजुअली इंटेंस लगने लगता है। This tell us something important. A color does not have one fixed emotional feeling. Intensely brightness or surrounding colors को बहुत ज़्यादा matter करती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं a soft pastel yellow की, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको सेटल लगेगा। On the other hand, अगर आप देखते हैं extremely bright neon yellow, तो
दोनों का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होगा, दोनों कलर्स टोटली डिफरेंट होंगे, और हो सकता है कि एक कलर आपको जो कि बहुत काम और नेचुरल लग रहा है, वहीं दूसरा कलर आपको बहुत ही ज़्यादा अनोइंग और इरिटेटिंग लगने लगे। लिसनर्स, इसी तरह से होता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे अपना पर्सनली एक फीडबैक शेयर करूं तो आई फील लाइक कि येलो कलर बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्राइट लगता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से मुझे रेड लगता है। और जब भी मैं कपड़े बाय करती हूं तो मैं प्रेफर करती हूं कि मैं रेड कलर का ड्रेस ना लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि रेड एक बहुत ही ज़्यादा शार्प कलर है और डेली बेसिस पर मैं इसको कैरी नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से येलो की भी मेरी नज़दीक यही बात है कि वो भी थोड़ा डार्क सा है, पर मुझे येलो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पेस्टल हो तभी अच्छा लगता है। वेल, ये मेरी थिंकिंग है। तो अब आप मोस्टली लोग ये सोच रहे होंगे कि येलो तो इतना वेलकमिंग कलर है तो मुझे क्यों इरिटेटिंग लगता है, लेकिन ये हर इंसान की अपनी चॉइस भी होती है। बाज़ औक़ात कुछ कलर्स हमें खुद को नागवार गुजरते हैं, या फिर वो कह लो ना कि आँखों को चुभन देते हैं। तो इस सूरत में भी हमारा मूड, हमारी अटेंशन और हमारे डिसीजंस इन कलर से इन्फ्लुएंस होते हैं। सो वेल लिसनर्स, अभी तक हमने रेड को, ब्लू को, येलो को, इन तीनों कलर्स को डिस्कस किया है। अब जरा करते हैं डिस्कस ग्रीन को, लेकिन क्यों ना उससे पहले एक अदद अच्छा सा ट्रैक सुन लें। सो इस गाने की फरमाइश हमें हमारे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर ने की है। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने लिसनर्स को कभी भी निराश नहीं करते। सो आइए मिलकर सुनते हैं इनका पसंदीदा गाना। तो आप भी सुने, मैं भी सुनती हूँ, और फिर सुनने के बाद आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और फिर मज़ीद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।

टेबल लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं अगले कलर की जानिब। सो हमारा अगला रंग है ग्रीन। अब देखते हैं कि ग्रीन किस तरह से आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है।

सो जब भी या कभी आप क्रेन को देखते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में नेचर आ जाती है, क्योंकि मोस्टली जो ग्रीन कलर है वो हमें नेचर में मिलता है. सो ग्रीन कलर को देखते ही माइंड तो चीज़ क्लिक करता है, सबसे पहले ट्रीज़, ग्रास, प्लांट्स, गार्डन. इसीलिए ग्रीन मोस्ट कॉमनली नेचर, फ्रेशनेस, ग्रोथ, बैलेंस और हेल्थ के साथ एसोसिएट किया जाता है. सो अक्सर आप नोटिस करेंगे कि सुपरमार्केट्स में ऑर्गेनिक या फिर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है वो हमेशा ग्रीन की जाती है. वेल द रीज़न इज़ क्योंकि ग्रीन कलर शो करता है कि ग्रीन इज़ क्लोजर टू द नेचर, क्योंकि नेचर में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको, मुझे, हम सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, प्लांट्स, ट्रीज़, ग्रास, वो सब ग्रीन होते हैं. सो यही रीज़न है कि जब भी कोई ऑर्गेनिक चीज़ दिखानी होती है या फिर ब्रांड को कुछ भी एडवर्टाइज़ करना होता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या फिर हमारा प्रोडक्ट टोटली ऑर्गेनिक है, तो वो हमेशा ग्रीन कलर को इस्तेमाल करते हैं. सो बिकॉज कलर जो है वो विजुअली नेचुरल को एसोसिएट कर रहा है, ग्रीन का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो बेसिकली ह्यूमन इन्वायरमेंट्स में प्लांट्स ग्रीनरी स्पेसिस को मोर नेचुरल और कंफर्टेबल फील करवाती है. अच्छा इमेजिन करें एक ऑफिस जहाँ बिल्कुल ग्रीनरी नहीं और दूसरा ऑफिस जहाँ प्लांट्स हैं. सेकेंड इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादा रिफ्रेशनेस फील होगी, आप खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे. सो यही वजह है कि मोस्टली लोग अपने घरों में प्लांट्स रखते हैं अपने इर्द गिर्द, ताकि ग्रीन कलर उनकी आसपास रहे और उनको नेचर से कनेक्टेड करता रहे. सो लिसनर्स, अगर आपके पास एक ऑप्शन हो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगर आप अपने रूम का कलर चेंज कर सकते हो तो आप कौन सा कलर प्रेफर करेंगे जो आपको मेंटली पीस देता है, साथ ही साथ वो आपके मूड को भी चेंज कर देता है और बाज़ुकात आपके मूड को इन्फ्लुएंस करता है. सो मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं आप सभी के लिए, देखते हैं कि हमारे लिसनर्स इनमें से कौन से ऑप्शंस को चूज़ करते हैं. सो द ऑप्शन वन इज़ ब्लू, ऑप्शन टू इज़ ग्रीन एंड ऑप्शन थ्री इज़ क्लासिक वाइट. सो वेल लिसनर्स, डू लेट मी नो आप मुझे किस तरह से बता सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, जो कि है 01157100971. सो जल्दी से जाकर मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. सो अब बात करते हैं ऑरेंज की. ऑरेंज, रेड और येलो, ये इन तीनों के बीच का एक कलर होता है और इसीलिए इसमें दोनों कलर्स के विजुअल एनर्जी काफ़ी हद तक कॉम्बिनेट कर रहे होते हैं. सो बेसिकली ऑरेंज को कॉमनली वार्म, फ्रेंडली, क्रिएटिविटी या फिर फन के साथ एसोसिएट किया जाता है. इसीलिए ऑरेंज प्लेफुल डिज़ाइंस और यूथ ब्रांडिंग में हमेशा नज़र आता है. अच्छा अगर हम देखें तो ऑरेंज ऑटम लीव्स और सनसेट में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि इट्स वार्म, इट्स एनर्जेटिक बट नॉट ऑलवेज एज इंटेंस एज ब्राइट रेड. सो अगर आप रेड को प्रेफर नहीं करना चाहते तो आप ऑरेंज को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज काफ़ी हद तक सिमिलर कैटेगरी से बिलोंग करता है बट थोड़ा सा कूल टोन लगता है मुझे. सो वेल लिसनर्स, बहुत सारे लोग जब ऑरेंज कलर को देखते हैं तो एक टूटी फ्रूटी सी रिफ्रेश वाइब्स हमेशा आती हैं. मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है जब मैं किसी को देखूं, किसी के पास ऑरेंज कलर का कुछ हो या फिर वाटर बॉटल हो, टी शर्ट हो या एनीथिंग, तो वो काफ़ी ज़्यादा समरी समरी और रिफ्रेश रिफ्रेश वाइब करता है. बट द प्लस पॉइंट इज़ कि ऑरेंज में भी ये चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप लाइट ऑरेंज देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, बट ऑन द सेम टाइम अगर आप डार्क ऑरेंज कलर का कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो मे बी वो थोड़ी सी चुभन क्रिएट कर सकता है. लेकिन ओवरऑल ऑरेंज एक बहुत ही ज़्यादा वार्म एनर्जेटिक कलर है. सो अगर आपको किसी भी जगह ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी हो कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग है, फनी है या फिर वार्म है, तो आप वहाँ पर ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं. सो ठीक इसी तरह से जब आप किसी भी ब्रांड में ब्रांडिंग कर रहे होते हैं या फिर आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो ठीक इस तरह से ये कलर्स आपके मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो डियर लिसनर्स, अब जरा आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कलर की जानिब, जो कि है पर्पल. और जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फजा 97.1 FM
हमारा ऑफिशियल कलर भी है पर्पल। सो जहाँ कहीं भी मैं पर्पल कलर देखती हूँ तो फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आती है वो है हमारा रेडियो स्टेशन रेडियो फजा 97.1 FM। और सेकेंडली जो चीज़ मेरे माइंड में आती है वो है BTS आर्मी, क्योंकि मैंने मोस्टली BTS आर्मी को देखा है कि वो हमेशा पर्पल हार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लैक, इंस्टेड ऑफ रेड एंड इंस्टेड ऑफ पिंक। सो वेल लिसनर्स, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक दो खूबसूरत सा ट्रैक। सो अब कौन सा ट्रैक सुने आप ही मुझे बता सकते हैं साथ साथ, तो साथ साथ मैं भी चेक करती हूँ कि कौन सा ट्रैक फिलहाल के लिए हमें सुनना चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारी सी फरमाइश अभी अभी हमें मौसूल हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसी को

So now let's talk about purple. So basically purple historically बहुत सारे cultures से associate किया जाता है. So purple color को कुछ इस तरह से देखा जाता है जैसे कि luxury, royalty और historical events. आज भी purple को creativity के तौर पर, imagination के तौर पर, mystery और luxury के concepts के साथ connect किया जाता है. अच्छा purple का अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. So purple color use होता है beauty products में, creative industry में, और अगर आपको किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखाना हो उसके लिए भी पर्पल इस्तेमाल होता है. बट पर्पल के डिफरेंट शेड, डिफरेंट इम्प्रेशंस अक्सर औकात क्रिएट करते हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं डीप पर्पल की. सो डीप पर्पल कैन फील ड्रामेटिक और लग्जरी, बट लेवेंडर कैन फील सॉफ्ट, काम, सेटल. अगेन सेम कलर, सेम फैमिली, बट डिफरेंट इमोशनल इम्प्रेशन. So that is the psychology, that is the hidden psychology between the colors. So purple color भी कुछ इसी तरह से है जिस तरह से बाकी color, लेकिन purple associate करता है थोड़ा सा royal चीज़ों से. So अगर आप देखेंगे कि कोई चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा क्लासी, रॉयल दिखानी हो तो आप उसमें पर्पल कलर का इस्तेमाल करते हैं. सो डैट इज़ द मेन रीज़न कि BTS आर्मी हमेशा पर्पल हार्ट का इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो अपने BTS फैंस या फिर अपने K-pop आइडल के साथ अपनी रॉयल्टी को दिखाना चाहते हैं या फिर अपने एक बॉन्ड को बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस दिखाना चाहते हैं इस वजह से. सो वेल लिसनर्स, आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि किस तरह से डिफरेंट कलर्स और उनके पीछे छुपी हुई हिडन साइकोलॉजी हमारे मूड को, हमारे डिसीजंस को और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को असरअंदाज करती है. वेल लिसनर्स, कलर्स तो बहुत सारे अभी भी बाकी हैं, बट प्रोग्राम में वक्त हो चुका है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो दीवा डायलॉग में फ़िलहाल के लिए हम बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपने इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है और हमें अच्छे अच्छे से सॉन्ग रिकमेंडेशंस भेजते रहना है, और मैं आपकी तमाम तर फरमाइशों को कमर्शियल ब्रेक के उस पार ज़रूर पूरा करूंगी और हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कुछ ब्यूटीफुल से कलर्स के बारे में. सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. सो स्टे ट्यून टू द फ़ज़ा 97.1 FM.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुशामदीद। मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो, आपका अपना कम्फर्ट प्लेस दीवार डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब पे। चलो लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी को बताती चलती हूँ कि 01157100971 है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। सो आप इस नंबर के थ्रू हमसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं या फिर इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है। साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप इस वक्त दुनिया के किस कोने में मौजूद हैं और हमें कहाँ से ट्यून कर रहे हैं। और एक बार फिर से बता देती हूँ कि www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो अगर आप भी अपनी आवाज़ का जादू जगाना चाहते हैं तो आप भी इस सीट पर मौजूद हो सकते हैं जहां मैं मौजूद हूं। सो उसके लिए सिंपल, आपको जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको www.radiofaza.com.uk की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो लिसनर, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कलर एंड देयर हिडन साइकोलॉजी, सो वापस से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और मैंने आपसे बहुत सारे कलर्स के हिडन एस्पेक्ट शेयर किए थे, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं अगले कलर की जानिब। सो हमारा अगला कलर है विच इज़ द मोस्ट फेवरेट कलर ऑफ ऑल द गर्ल्स। आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की होगी जिसको ये कलर ना पसंद हो, क्योंकि ये कलर सभी का फेवरेट है। सो अब आते हैं हम पिंक की जानिब। सो पिंक को मोस्ट कॉमनली सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, अफेक्शन और प्लेफुलनेस के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन पिंक का मीनिंग कल्चर और टाइम के साथ काफ़ी हद तक चेंज होता रहता है। आज पिंक को औरतों की एक मुश्तरका कलर के तौर पर जाना जाता है या फिर फेमिनिटी से एसोसिएट किया जाता है, लेकिन इन मैनी सोसाइटी दिस एसोसिएशन इज नॉट अ यूनिवर्सल बायोलॉजिकल रूल। दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। कलर्स की मीनिंग पार्टली सोशली डिफरेंट होते हैं हर जगह। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट कल्चर्स में कलर वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, रिलीजियन ओकेजंस हर तरह से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट साउंड करते हैं। यही एक मेन वजह है कि व्हेन वी से पिंक मींस दिस, वी शुड रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट एन एसोसिएशन, नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। जी लिसनर्स, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि कोई भी कलर, चाहे वो ब्लैक हो, पिंक हो या फिर हो ब्लू, हर कलर हर कल्चर के लिहाज से डिफरेंट समझा जाता है, डिफरेंट माना जाता है। तो अगर कोई इंसान कहता है कि उससे पिंक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इट डजेंट मीन कि हर कल्चर के लोगों को पिंक बहुत पसंद हो। इवन थो कि पिंक बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर कलर है, बहुत सॉफ्ट सेटल है, बट फिर भी। सो ये तमाम तरह के अनासे हैं जो कि आपके मूड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं और आपको इस चीज़ की तरफ पुश करते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट तरह के डिसीजंस को प्रिसीव करें। जी तो लिसनर्स, अब आगे आते हैं द मोस्ट पावरफुल एलिगेंट और सीरियस कलर की जानिब। ये एक ऐसा कलर है जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको हर जगह दिखा जाता है। सो अगर हम बात करें क्लासिक क्लॉथ्स की या फिर हम बात करें किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बनाने की, तो इस कलर का काफ़ी हद तक हाथ होता है इस सब में। सो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ ब्लैक कलर की। आइए जानते हैं ब्लैक कलर की हिडन साइकोलॉजी को। सो बेसिकली ब्लैक को मोस्ट कॉमनली पावर, सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, सीरियसनेस और मिस्ट्री के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो फैशन में ब्लैक एक बहुत ही पॉपुलर कलर समझा जाता है बिकॉज इट ऑफन गिव अस अ सिंपल एंड फॉर्मल अपीरेंस। चाहे ब्लैक सूट्स हों या हों ब्लैक ड्रेसेस, ब्लैक कार या फिर ब्लैक लोगोस, हर तरह की चीज़ मुझे ब्लैक में बहुत ही ज़्यादा रॉयल लगती है, क्लासी लगती है, एंड मेरा तो फेवरेट कलर भी ब्लैक है। सो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे मोस्टली आउटफिट्स में ब्लैक आए, और ये काफ़ी हद तक होता भी है क्योंकि मेरे मोस्टली कपड़े ऐसे हैं जिसमें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा आता है। बट ब्लैक कैन ऑल्सो हैव एसोसिएशन विद सैडनेस,
negativity depending upon the culture and depending upon the situation. So, अब मैं आपसे एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जो कि हो सकता है आपकी नज़र में मीनिंग को चेंज कर दे. सो बेसिकली अ ब्लैक आउटफिट एट अ फॉर्मल इवेंट कैन फील एलिगेंट. अ ब्लैक सिंबल इन अ वार्निंग कॉन्टेक्स्ट मे फील सीरियस. सेम कलर डिफरेंट सिचुएशन बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. सो कुछ इसी तरह से है जहाँ लोग ब्लैक को क्लासी एलिगेंट और रॉयल कलर समझते हैं तो वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि काले कलर को शोक की अलामत समझते हैं या फिर गम और दुख की अलामत समझते हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि बहुत बड़े फैशन इवेंट्स या फिर फैमिली गेट टुगेदर्स में लोग ब्लैक इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो खुद को रॉयल और क्लासी दिखाना चाहते हैं. तो दूसरी जानिब लोग ब्लैक इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो किसी इमोशनल इवेंट में जा रहे हैं और वहाँ ब्लैक शो को रिप्रेजेंट करेगा. जी तो लिसनर्स, अब हमारा लास्ट कलर रह चुका है तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एलिगेंट है, क्लासी है. लेकिन उससे पहले, डिस्कस करने से पहले, हम सुन लेते हैं एक अदद अच्छा सा प्यारा सा ट्रैक जो कि हमारी एक लिसनर ने हमें रिकमेंड किया है. तो ट्रैक सुनने के उस पर हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को जो कि है कलर एंड देयर हिडन साइकोलॉजी.

नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

तो लिसनर्स, अब हम बात करते हैं वाइट। अच्छा, वाइट इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद क्लीनिनेस, सिंप्लिसिटी, पीस एंड फ्रेशनेस। आप अक्सर का देखते हैं कि हॉस्पिटल्स हों, लाइब्रेरीज हों या फिर मेडिकल इन्वायरमेंट, अक्सर आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर दिखता है, क्योंकि इट कैन कम्युनिकेट क्लीनिनेस। मिनिमलिस्ट इंटीरियर डिज़ाइन में भी मोस्टली वाइट कलर ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है। वाइट स्पेसेस कैन फील ओपन एंड अनक्लटर्ड। बट इंटरेस्टिंगली, वाइट का जो कल्चरल मीनिंग है वो भी यूनिवर्सल नहीं होता। डिफरेंट कल्चर्स में हम वाइट कलर को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अच्छा, कुछ कल्चर्स में वाइट वेडिंग, प्योरिटी या फिर स्पिरिचुअलिटी को एसोसिएट करता है, जबकि दूसरे कल्चर्स में वाइट कलर कहीं कोई कल्चर ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पर लोग वाइट कलर को एज अ सोग इस तरह के इवेंट्स में भी कैरी करते हैं। सो इसी तरह से वाइट कलर का भी कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता। आप अपने कल्चर के मुताबिक उसका मीनिंग अहस कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने किसी चीज़ को नीट और क्लीन दिखाना होता है तो उसके लिए आप वाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। सो लिसनर्स, किस तरह से डिफरेंट कलर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं डेली जिंदगी में, ज़रा उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। सो बेसिकली कलर्स हमारी लाइफ में हर जगह होते हैं, चाहे आप क्लॉथिंग की बात करें या फिर इंटीरियर की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें या फिर आप बात करें किचन एक्सेसरीज की, मेकअप की, हर जगह आपको हर तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बाज़ुकात ऐसा होता है कि कलर्स आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहे होते या कभी कभार आपकी पर्सनैलिटी के टोटली ऑपोजिट होते हैं। सो इस तरह की सिचुएशंस में ऐसा लगने लगता है

कलर जो आपने चूज़ नहीं किया वो आपको पसंद नहीं है. डिपेंड करता है सिचुएशन पे. समटाइम्स यू वांट समथिंग ब्राइट, बट ऑन द अदर टाइम यू वांट समथिंग सिंपल. इसी तरह से कभी कभार यू वांट समथिंग प्रोफेशनल, तो कभी कभार यू वांट समथिंग फन. दैट मीन कलर कैन बिकम अ पार्ट ऑफ हाउ वी एक्सप्रेस अवर सेल्फ्स. देन वी हैव इंटीरियर डिज़ाइन, बेडरूम्स के कलर, ऑफिस के कलर, रेस्टोरेंट, कैफे, इवन एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल. देन देर इज़ अ मार्केटिंग. कंपनीज भी केयरफुली यूज़ करती हैं डिफरेंट तरह के कलर्स को, लोगोस को, क्योंकि ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है आपके सोच को, आपके माइंड को और आपके मूड को. सो अगर कोई कलर ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको इरीटेट करें. इसीलिए ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो डार्क लाइट कलर इन दोनों कलर्स के मजमुए को ही रिप्रेजेंट करते हैं. सो लिसनर्स, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त सा टॉपिक, कलर एंड देयर हिडन साइकोलॉजी, जिसमें मैंने कोशिश यही की है कि मैं अपनी तरफ से ज़्यादा मैक्सिमम कलर्स को कवर कर सकूँ. सो जितने भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के कलर्स हैं, मैंने उन तमाम तर कलर्स को आपसे शेयर किया. साथ ही साथ ये भी शेयर किया कि किस तरह से ये कलर्स आपकी डेली बेसिस रोज़मर्रा ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं. आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा. और अगर इस हवाले से आपका भी कुछ कहना है, कुछ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, सो आप भी हमें बता सकते हैं, या आप हमसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से जब आपने डिफरेंट तरह के कलर्स का कॉम्बिनेशन किया तो वो आपको प्लेजेंट फीलिंग दे रहा था या फिर अनप्लेजेंट फीलिंग दे रहा था. सो वेल लिसनर्स, उम्मीद तो यही है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा. एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ 0115710971, जो कि है मेरा और आपका रابطے का नंबर. इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं वेल आज के प्रोग्राम के हवाले से, आज के दिन के हवाले से, या फिर किसी भी ज़िंदगी के मोड़ के हवाले से आप हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं, तो बेफिक्र आसानी से कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू, क्योंकि ये हमारे बीच एक बात क्रिएट करता है जिसके थ्रू आप मुझसे मेरे दिल की तमाम तरह बातें जान सकते हैं और मैं भी जान सकती हूँ कि इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है. वेल लिसनर्स, बातें करते करते वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बातें इंसान की कभी भी ख़त्म नहीं होती, वक्त अलबत्ता ख़त्म हो जाता है. तो कुछ इसी तरह से आज टीवा डायलॉग का ये जो सफ़र, जिसे हमने ठीक 10 बजे शुरू किया था, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है. और इन सारी बातों शातों में, गपशप में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि आपसे आज का द स्पाइस किचन शेयर कर सकूँ. सो कल मैं आपसे शेयर करूँगी एक नहीं बल्कि दो रेसिपीज, जो कि होंगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ज़बरदस्त, मज़ेदार सी. सो आज के दिन के हवाले से ज़्यादा बात कर लेते हैं, और आप सब के लिए मेरे पास कुछ मोटिवेशनल है, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं इसे अपने लिसनर्स के साथ शेयर करूँ. तो मैं करती हूँ आपसे शेयर.

सही। तो लिसनर्स, ये मोटिवेशनल कोट उन सभी लोगों के लिए है जो कि जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं कि वो कुछ अचीव करें, बट वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। तो आप सभी के लिए ये कुछ लाइंस हैं मेरे पास जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो इफ़ यू स्टे इन योर कंफर्ट जोन, दैट्स वेयर यू विल फेल। You will fail in your comfort zone because success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you gotta get comfortable being uncomfortable if you ever wanna be successful. So the listeners, lines कुछ यूँ हैं कि हमारी lines ये कह रही हैं कि अगर आप अपने comfort zone में रहना चाहते हैं तो that is the most probably reason कि आप unsuccessful हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। So आप fail तभी होते हैं जब आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलते। Success कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती, ये बहुत ही मुश्किल और कठिन सफ़र है। So अगर आप अनकम्फर्टेबल हो के, यानी कि अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरद करके अगर कम्फर्टेबल फील करते हैं, सो डैट इज़ द मोस्ट मेन रीज़न कि आप सक्सेसफुल बनने की तरफ जा रहे हैं। सो आई होप लिसनर्स, ये आप सभी की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मोटिवेशन को लेकर आएगा। और जो हमारे बहुत से लिसनर्स हैं जो कि हर सुबह ज़रा सा

दोस्ती और काहिली में मुब्तिला रहते हैं तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए दैट इज़ द बेस्ट लाइन। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने आज के शो में ज़रूर आप सभी से इनको शेयर करूँगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो, आप तरक्की हासिल करें, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सो डियर लिसनर्स, इसी के साथ ही डीवा डायलॉग का आज का सफर हुआ जाता है खत्म। बहुत मजा आया आप सबके साथ गपशप करके। आई होप आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। वेल, इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो या किसी भी चीज की आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी कीमती राय हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी स्पेसिफिक रेसिपी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, या फिर कुछ भी एनीथिंग आप हमसे कर सकते हैं आसानी से शेयर। सो अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी गॉसिप्स के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना प्ले कर देती हूँ। सो आप इसको सुनते सुनते मुझे अलविदा करें। अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

फजल 97.1 एफएम के लाइव शोरचे जी मैं हूँ आपकी आरजे दीवन एंड ऑन दी आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलू राज। खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को लंबे से बीजीएम के साथ। थोड़ा सा बीजीएम आपको एक्स्ट्रा सुना दी लेकिन कोई बात नहीं, लंच बॉक्स में वेलकम करते हैं उन तमाम समातों को जिन्होंने आज और अभी हमें ट्यून किया है। सवाल बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है दिन। उम्मीद करते हैं कि दिन अच्छे से ही गुजर रहा होगा और अगर अच्छे से नहीं गुजर रहा तो हम हैं ना आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए। बस आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार आपको बताए देंगे 01157100971। इस खूबसूरत नंबर को करना है सेव और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है और बताना है कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से। गूगल पर सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहां पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है सोल्व आपको वहां से मिल जाएगी। सो जो लोग मुझे घर बैठे सुन रहे हैं बताएगा क्या मुझे क्या करता है, मोस्टली मुझे खवातीन ही घर बैठ के सुनती हैं और खवातीन जो हैं वो ज़्यादातर मुझे यही रिक्वेस्ट करती हैं कि रेसिपी के हवाले से मुझे थोड़ी सी हमारे साथ डिस्कस करें। बट अभी जो मेरा प्रोग्राम ज़्यादा ऊपर जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, क्योंकि प्रोग्राम में जो है वो मैं टॉपिक शामिल करती हूँ और डेली रूटीन पे मैं टॉपिक रखे जाते हैं, टॉपिक बहुत मज़े के होते हैं। आज मैं बड़े ही फिट सा टॉपिक जो है ना वो आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी ज़ात के हवाले से, हमारे अपने हवाले से। बट उससे पहले जो है वो जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं बी सेफ बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, पैसेंजर्स को एहतियात से और ख्याल से उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाइएगा, या फिर उनका भी अब गाड़ी से उतरने का मन नहीं कर रहा हमारी आवाज़ सुनकर तो आप उनको बिठाए रखिए और उनकी फरमाइश अगर कोई है तो हम तक पहुँचा दीजिए और उनसे ये कह दीजिए कि अगर वो कोई ट्राई किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं या फिर कोई पैगाम आज के प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए, कोई कोटेशन, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर कोई ट्रैक मुझे डेडिकेट करना चाहें, सो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं।

और जो लोग अभी ऑफिसेज की तरफ निकल चुके हैं, कामकाज की तरफ निकल चुके हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपका दिन कैसा गुजरा है। और अगर ऑफिस में जाते साथ थोड़ी सी अनबन हो चुकी है बॉस के साथ, तो घबराने की कोई बात नहीं, कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ, बस आप यूँ कर लीजिए कि अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप रेडियो फिजिकल ट्यून कर लीजिए, क्योंकि आपकी तन्हाई का साथी सिर्फ और सिर्फ 107.1 FM ही है। और इसी के साथ साथ अगर जाने से थोड़ा मसला है तो आप, हाँ, आप हेडफोन्स लगा सकते हैं। हेडफोन्स लगाकर आप चुपके से काम करते करते आप सलराज को सुन लीजिए। और अगर कोई ट्रैक अपनी पसंद का प्ले करवाना चाहें तो मुझे वो भी बताइएगा, और प्रोग्राम में शामिल होकर ऐसे ट्रैक शामिल करवाइएगा जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं प्रोग्राम में जो है वो छलकते पड़कते ट्रैक शामिल करूँ, सॉफ्ट कॉर्नर वाले ट्रैक शामिल करूँ, ना कि सैड ट्रैक शामिल करूँ। सैड ट्रैक शामिल हो जाए ना तो फिर वो थोड़ा सेंटीमेंटी बन जाता है, तो वो मेरी कोशिश यही रहती है कि उसको जो है साइड में ही रखा जाए। हाँ, अगर फरमाइश आन पहुंची तो फिर उसको शामिल करना मुझे पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन उसी के साथ साथ जो है ना, मेरे पास एक बड़ा ही मजे का आज का टॉपिक है, और सीरियसली मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना कल से, जब मैं आपको अलविदा कर गया, आपको अलाफिज किया, उसके बाद मैंने जो है ना एक बैठे बैठे दिमाग में अचानक से टॉपिक आया और मैंने उसके बारे में सर्चिंग वगैरह शुरू कर दी, और इतनी मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं उस टॉपिक को प्रोग्राम में कल जल्दी से आकर शामिल करूँ। आज मतलब मैंने सोचा कि अपने हवाले से आपके पास एक टॉपिक रखा जाए, पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, अपनी ज़ाती नशोनुमा के हवाले से। पर्सनल ग्रोथ से मुराद के इंसान वक्त के साथ साथ अपनी सोच, शख्सियत, सलाहियत, रवैये और आदतों को बेहतर बनाता है। ये सिर्फ कामयाब होने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को जो है वो खुद को कल से बेहतर बनाने का एक सफ़र है। इस सफ़र को किस तरह से हम लेकर चलेंगे, किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, और बहुत इस सफ़र में किस तरह की मुश्किलात आएंगी, किस तरह की परेशानियाँ आएंगी, और इस सफ़र को किस तरह से हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। सो पर्सनल ग्रोथ के जो है मुख्तलिफ पहलू भी होते हैं, हम उसके साथ उसके बारे में डिस्कस आपके साथ करेंगे। इस प्रोग्राम में जो है मैंने इस टॉपिक को इसलिए पहले शामिल करवा दिए ताकि जो है वो फिर आपके साथ गपशप तो रहेगी, लेकिन आप भी जो है वो इसके हवाले से जो है इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचा दें। लेकिन अभी के लिए जो है प्रोग्राम का आगाज करेंगे खूबसूरत से ट्रैक के साथ। वेल, स्टे ट्यून्ड 107.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा, ट्यून करके रखिएगा 107.1 FM को एंड ऐप को। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरोराज की, जहाँ पर हमारा आपका साथ रहता है ठीक को ठीक 2 बजे तक। और इस खूबसूरत सफ़र को हम बनाते हैं, साथ को हम बनाते हैं मिलकर खूबसूरत। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ एक खूबसूरत ट्रैक के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। आज मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में अपनी पसंद का ट्रैक शामिल कर दिया, और मुझे फिर साथ एक मैसेज रिसीव हुआ है कि आपने मेरी पसंद का ट्रैक नहीं शामिल किया प्रोग्राम में। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रैक जो शामिल करेंगे वो आपकी फरमाइश का कर देंगे। कभी कभार हमारी भी तो जो है वो ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, मतलब हमेशा कहते हैं। अभी हम बात भी इसी तरीके से करने वाले, पर्सनल ग्रोथ के हवाले से भी, पर्सनली बात अपनी भी की जाए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को फर्स्ट पे रखना चाहिए। सर बात हम करें, हमारा जो आज का टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ, अपनी ज़ात को समझना हमारे लिए सबसे पहले ये काम होता है कि सबसे पहले इंसान को ये जानना चाहिए कि उसकी खूबियाँ क्या हैं, कमज़ोरियाँ क्या हैं, और वो ज़िंदगी में क्या हासिल करना जानता है, ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहता है। और साथ ही में जो है, जब इंसान अपने अंदर खामियां खूबियों समेत अपने आप को कबूल करता है ना, तो फिर उसको किसी दूसरे इंसान में कोई ऐब नज़र नहीं आता। हाँ, हर इंसान में होती हैं खूबियां भी खामियां भी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर्सनल ग्रोथ के लिए जो है सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, और जो है वो तजर्बात से सबक लेना इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है और आगे बढ़ाता है इस चीज़ से। अच्छी सोच अपनाना जो है ये भी इसमें आता है। आप मुश्किलात को ना के लास्ट मोमेंट एंड समझ लो, बल्कि समझने के बजाय उन्हें सीखने का मौका जो है वो समझने का मौका रखना चाहिए। अच्छी सोच इंसान को मुश्किल हालात में जो है भी अच्छी सोच अगर होगी तो, इधर बात अच्छी सोच की हो रही है, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप किसी भी जगह पर, किसी भी मुश्किल जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी परेशानी में सर्वाइव कर सकते हैं। इंसान गलतियों से बहुत कुछ सीखता है, गलती होना नाकामी नहीं होती। मोस्टली जो लोग हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि गलती हो गई है, अब ये चीज़ दोबारा मे भी शायद मेरे से ना हो पाए, एक दफ़ा गलती होगी। नो, अगर एक दफ़ा गलती हो गई है तो मे भी शायद अगली दफ़ा आप उसको अच्छे से कर सकें। हाँ, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा तो ये क्या नाम है, इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है। सो गलती होना नाकामी नहीं होती, असल कामयाबी ये है कि इंसान अपनी गलती को पहचाने, इससे सबक हासिल करे और दोबारा बेहतर तरीके से जो है उसको इस पर काम करना शुरू कर दे। खुद पर एतमाद रखेंगे तो यकीन जाने कि हर मंजिल, हर मुश्किल जो है वो आसान लगेगी, और हर मंजिल जो है वो आपके करीब बहुत बहुत आएगी। जब इंसान अपनी सलाहियतों पर यकीन रखता है ना, तो वो दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी मेहनत और मकसद पर तवज्जो देता है। हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसी दूसरे शख्स के हाथ में पकड़ा देंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपकी ज़िंदगी की डोर फिर उनके हाथ में है, तो फिर वो अपनी मर्जी से जब चाहे उसको खींच देंगे, जब चाहे उसको ढीला छोड़ देंगे। अब पर्सनल ग्रोथ में बहुत ऐसे पहलू आते हैं जिनमें डिस्कस किया, अपनी ज़ात को समझना, नई चीज़ें सीखना, अच्छी सोच को अपनाना, गलतियों से सीखना, और साथ खुद पर एतबार जो है, और उसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात वक्त की कदर। वक्त की कदर हमें हमेशा करनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ में जो है वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत अहम है। जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता, इसीलिए अपनी जो है वो वक्त को, अपने टाइम को वेस्ट मत करें। अगर कोई काम वक्त से पहले फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप यूँ कर सकते हैं कि रेस्ट मत करें। हाँ, रेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर की करें, फिर अगला काम शुरू करने से पहले, उसके टाइम से पहले आप अगर वो काम शुरू कर देते हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर बने, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि आप हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। ज़िंदगी में हालात हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होते, लेकिन हम अपनी सोच, रवैये और फैसलों को ज़रूर बेहतर बना सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखना, फिर नई चीज़ें सीखते रहना, खुद पर यकीन रखना और अपने मकसद के लिए मुसलसल कोशिश करना ही जो है वो हकीकी ज़ाती नशोनुमा है। याद रखें कि बड़ी तब्दीली हमेशा एक बड़े कदम से नहीं आती, कभी कभी जो है वो रोजाना की एक छोटी सी बेहतरी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है।
खुद को दूसरों से बिल्कुल भी मत मिलाएं, खुद को दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल से मुकाबला करना आपको आना चाहिए। हर इंसान का सफ़र मुख्तलिफ होता है, हर इंसान की मंजिल मुख्तलिफ होती है, हर इंसान का ओपिनियन जो है वो चेंज होता है, मुख्तलिफ होता है। असल कामयाबी ये है कि आजकल की जो अच्छी सोच है ना, वो हमें हमारे आने वाले कल के लिए हमारे लिए बेहतर हो सकती है। अब कंफर्ट जोन की बात की जाए तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तरक्की उस वक्त शुरू होती है जब इंसान नई चीज़ें आजमाने और मुश्किल काम से घबराना छोड़ देता है। हाँ, जब आप घबराने की तरफ जाएंगे या फिर आप सोच लेंगे कि नो यार मतलब तो ये मेरे टाइप का काम नहीं है, तो फिर वो चीज़ वाकई नहीं हो पाएगी। मोस्टली ये लोग जो हैं वो इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं ये कह कर के मैं भी शायद ये मैं ना कर पाऊँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो इंसान सोच लेता है ना कि मैं ये करूँगा, तो फिर वो करके ही रहता है। बेशक आगे जाके वो डामाडोल हो जाता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर उसने चीज़ सोच ली तो आने वाले टाइम में किसी ना किसी टाइम में उस चीज़ को सर अंजाम ज़रूर देगा। बाज़ुका जो है वो मसले और हालात जो है ना वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं, बल्कि हमारे हालातों को देखने का एक अंदाज़ भी हमारा मुख्तलिफ होता है, परेशानी को देखने का एक अंदाज़ हमारा मुख्तलिफ होता है। सोच में तब्दीली ज़िंदगी में भी तब्दीली ला सकती है। अपनी सोच में तब्दीली लाएं, आपकी सोच बदलेगी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होगा। अगर आपकी सोच उसी तरह से घिसी पिटी रहेगी ना, तो फिर आपने जो है ना यही सोचना है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे। सो वही बात आ गई कि चार लोग क्या बोलेंगे, तो आप समझ लें कि चार लोग आपके घर के ही हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आपने नोटिस किया मैं फिर से कुछ और बोलने वाली थी लेकिन ज़ुबान मेरी फिसलाते फिसलाते रह गई। सो ज़ाती तरक्की की बात की जाए तो ज़ाती तरक्की जो है ना वो एक ही दिन में नहीं होती। छोटी छोटी कोशिशें जब मुसलसल जारी रहे ना, तो वक्त के साथ बड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। और जब आपको ये फ़र्क नज़र आता है तब तक आप सोचते हैं कि मतलब काश ये कोशिश मैंने जब स्टार्ट की थी उससे पहले ही सोच लिया होता तो कर ली होती, तो शायद अभी तक जो है वो मैं थोड़ा और आगे होता। हर काम जरूरी नहीं होता, जो चीज़ें वाकई आपके मुस्तकबिल और मकसद के लिए अहम हैं उन्हें सीखें, उनके पीछे भागें। और वो चीज़ अगर आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या, आपने जो सोच लिया वो कर सकते हैं ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट हो, कभी हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। शुरू शुरू में गलतियाँ हो जाती हैं, पर इंसान माजी की गलतियों में हमेशा उलझे रहने की बजाय, अगर बहुत से लोग उलझे भी रहते हैं, कुछ लोग जाए उलझने के बजाय उनसे सबक भी लेके आगे बढ़ते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो वहीं पर रुक जाते हैं। सो आप रुके मत, आप अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन रखें, आगे लेकर चलें। सवाल बात को कंटिन्यू करेंगे वापसी पे आकर। अभी हम यूँ कर लेते हैं कि प्रोग्राम में एक ट्रैक शामिल कर लेते हैं, फरमाइश आई है तो इस ट्रैक के इस पर मेरे आपको दरमियान हायल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद रहेगी आपसे मुलाकात। सवाल स्टे ट्यून फजल 7.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

बस एक हां के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहां आएगी। सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज ऑप्शन सलोराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। और इस 2 बजे के साथ को मजीद खूबसूरत बनाता है आपका साथ, जब आप अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते हैं। सुबह मजे मजे के ट्रैक भी प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं। आप सोचते होंगे कि सलोराज BGM सुनाकर पता नहीं कहाँ चली गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम में जो है वो एक फरमाइश को पूरा कर दीजिए। फिर उस फरमाइश के उस पार जो है आपसे गपशप का सिलसिला जारी करें, इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करें, टॉपिक जो हमारा आज का है उसके बाद से इन्फॉर्मेशन आपके साथ वापसी भी आकर शेयर कर लें। वह हमारा आज का टॉपिक जो था वो था पर्सनल ग्रोथ, और उसके बाद से डिस्कस हम कर रहे थे पर्सनल ग्रोथ में। मजीद बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। वह ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये सारी बातें पता हूँ, कभी कभार कुछ बातें मुझे नहीं मालूम होती, कभी कभार आपको नहीं कुछ बातें मालूम होती। सो अभी जो देखा जाए, खुद को तरजीह देना इस जिम्मेदारियों के साथ अपनी ज़हनी जज्बाती और ज़ाती बेहतरी के लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में कभी भी नहीं कहना मत सीखें, क्योंकि हाँ वक्ती तौर के लिए मुंह पे हाँ कर दें, लेकिन हाँ ज़रूर करें। हो सकता है कि आपकी वो उस हाँ की वजह से किसी भी के दिल में आपकी जगह बन जाए। और अगर किसी काम को टालना भी देखकर तो एक अच्छे तरीके से टालें। नहीं कहना सीखना जो है ना, बहुत सी जगह पे ज़रूरी भी होता है, बहुत सी जगह पे ज़रूरी नहीं भी होता। हाँ, मुझे किसी ने कहा था, मेरे उस्ताद ही हैं, और उन्होंने मुझे कहा था कि मतलब उन्होंने मुझे किसी से बात करते देख लिया था तो मेरे फ़ौरन से मुंह पे इनकार कर दिया। तो वो मेरी तरफ ऐसे देखते रहे, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मतलब सल्यूट है यार तुम्हें कि तुम मुंह पे इनकार करना तुम्हें आता है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो लोग मुंह पे इनकार करते हैं वो लोग ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। सो किसी की जगह पर इनकार करना चाहिए, किसी किसी जगह पर बात को टाल देना चाहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान जो है खुद को नज़रअंदाज कर देता है। मुनासिब जगह पर नहीं कहना भी जो है वो खुद अपने आप को एक बुरा बंदा फील करवाना। लेकिन हाँ, किसी किसी जगह पे ऐसा माहौल बन जाता है कि इनकार करना पड़ जाता है। हर तब्दीली का इलाज करना ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात इंसान खामोशी से खुद बर काम करता है, उसी की शख्सियत जो है खुद उसकी मेहनत की गवाही देती है। नाकामी को नई शुरुआत अगर समझ के आगे बढ़ा जाए तो जस्ट वेरी ग्रेट। नाकामी को नई शुरुआत समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं। नाकामी हमें बताती है, हमें सिखाती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा। इस तजर्बे से सीखकर दोबारा कोशिश करना तरक्की का हिस्सा बन सकता है। कभी कभार बन जाता है और कभी कभार नहीं बनता, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो अगर आप किसी एक जगह से हारे हो तो अगर आप दोबारा ये सोच के उस चीज़ पर काम नहीं करेंगे कि एंड दी एंड मेरे साथ यही होना है, बट जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, हर दफ़ा वक्त एक जैसा नहीं होता। जिस बात को समझना गुस्सा मायूसी या परेशानी के वक्त जो है वो फौरी रद्द अमल देने की बजाय अपने जिस बात को समझना, और सबसे बड़ी बात सोच समझ कर फैसला करना शख्सियत को मजबूत बनाता है। और मैं कहती हूँ कि जो इंसान सोच समझ कर जवाब देता है उस बंदे से बंदा कोई अच्छा है ही नहीं। मेरे साथ भी एक दो दफ़ा ये सीन हो चुका है। मैं किसी गैदरिंग पे गई थी तो वहाँ पर जो है वो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ तो किसी ने एक छोटा सा सवाल किया तो उसने फ़ौरन से पलट कर जवाब दे दिया, लेकिन मैं उसी टाइम फ़ौरन सोच में पड़ गई कि जवाब क्या देना चाहिए। मतलब मैंने बहुत सोच के बहुत कम अल्फाज में जवाब दिया, और फिर मुझसे कहा गया कि इस बंदी ने फ़ौरन से जवाब दिया, मतलब ये लड़की इंटेलिजेंट है। और मज़े की बात असर क्या हुई कि कोई साथ अनोन पर्सन बैठा हुआ था और वो उसने पलट कर बोला कि नो, जिसने सोच के जवाब दिया ना वो बंदी ठीक है, वो बात सही है। और फिर मैं उस चीज़ को काफ़ी देर तक सोचती रही कि हाँ, सोच समझ कर जवाब देना वाकई समझदारी की बात होती है। सो हर जगह पर सोच समझ कर ही जवाब देना चाहिए। बात की जाए तो फिर दूसरों की कामयाबी से मुतासर होने की बजाय खुद को मुतासर करना, किसी और की कामयाबी को अपनी नाकामी ना समझें। इसीलिए जो है ना इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। इससे इस बात की जो है मिसाल समझें कि मेहनत और कोशिश जो है ना इंसान को आगे से आगे लेकर जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आज आप डाउन टू अर्थ हैं तो कल भी उधर ही होना है। नो,
कभी कभार जो है ना पता नहीं चलता कि एकदम से कामयाबी का झंडा हाथ लग जाता है और पता भी नहीं चलता कि मतलब उस चीज जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में कभी इंसान ने सोचा भी नहीं होता। सो कोई छोटी मोटी कामयाबी की भी कदर करें, हर कामयाबी जो है वो बड़ी नहीं होती। एक बड़ी आदत जो है मतलब अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ना शुरू करेंगे ना, तो यकीन माने कि बड़ी बड़ी चीज़ें आपके पास खुद आएंगी। एक बुरी आदत छोड़ देना, नई स्किल सीख लेना या किसी मुश्किल काम को मुकम्मल कर लेना भी जो है ना वो इंसान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ कबूल करना, हर उस चीज़ को कबूल करना जो आपको लगे कि ये हमसे नहीं हो सकती। अपनी हर मुश्किल का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने के बजाय ये सोचना कि मैं इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये पर्सनल ग्रोथ की चंद अहम अलामत थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत मुकाबला दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ है। अगर आप आज अपने कल से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा पुरसकून हैं तो आप मेरे ख्याल में ग्रेट, आप तरक्की कर रहे हैं। याद रखें कि पर्सनल ग्रोथ का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर होता है, लेकिन अगर इंसान मुस्तकबिल की तरफ जाए, खुद पर काम करना शुरू कर दे, तो एक दिन वो अपनी ही शख्सियत में एक खूबसूरत तब्दीली महसूस करता है और फील भी होती है। और जब आपको अपनी अंदर ये चीज़ नज़र आ जाती है तो फिर यकीन माने कि आप दुनिया की हर चीज़ को पार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ होने के बाद आप में गरूर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, मगरूर नहीं इंसान को हो जाना चाहिए। सो पर्सनल ग्रोथ के मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लंच बॉक्स में, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो जो मैं आपके साथ शेयर करूँ वो आपके पल्ले भी पड़े। यकीन माने कि जिसने भी मेरी बातों पर अमल कर लिया तो मैं समझूंगी कि मेरा जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो ठग से पूरा हो चुका। सो अभी पर्सनल ग्रोथ के गहरे पहलू में बात की जाए ना, खुद को जानना खुद को बदलने से पहले ज़रूरी है या नहीं, ये मुझे आपने सबसे पहले बताना कि खुद को जानना खुद को बदलने से पहले ज़रूरी है या नहीं। मेरे ख्याल में जब तक इंसान जो है अपनी आदतें, कमज़ोरियों और सलाहियतों को नहीं पहचानता, वो हकीकी तब्दीली नहीं ला सकता अपने अंदर। हाँ, अगर वो देख रहा है कि अब बहुत से लोग ऐसे होंगे, नो भैया आई एम परफेक्ट, आई एम मतलब मैं तो परफेक्ट हूँ ही हूँ, अगला इंसान का मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर आपको खामियाँ खूबियाँ दोनों नज़र आ रही हैं तो फिर इस बात पर जो है वो माना जा सकता है। फिर ज़िंदगी आपको खुद मौका देती है आगे बढ़ने का, तब आप हर बुरी चीज़ को बुरा, हर अच्छी चीज़ को अच्छा बोलेंगे। हाँ, बट हर तजुर्बा एक सबक है और ज़िंदगी में आने वाले हर शख्स और हर सूरत हाल हमें कुछ ना कुछ जो है वो सिखाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर तजुर्बा अच्छा हो, लेकिन हर तजुर्बे से जो है कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। अपनी सोच की जिम्मेदारी लेना, हम जो है ना वो हर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मसले आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन इस सूरत हाल के बारे में अपनी सोच और रद्द अमल को ज़रूर बेहतर बना सकते हैं कि हम किस तरह से ज़िम्मेदारियों को समझ सकते हैं। खामोशी से जो है हर चीज़ को तय करना, ये भी जो है एक अकलमंदी बात होती है। और मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है इसमें कि खामोश तरक्की। वो कहते हैं ना कि कामयाबी इतनी खामोशी नहीं, मेहनत सॉरी इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी

पहले ही सबको सब कुछ बता देना, अभी सिर्फ सोचा ही, तो वो उस चीज़ पर हो नहीं पाती थी। और फिर बाद में इतनी एम्बेरसमेंट फील होती थी, इतना गुस्सा आता था कि ये चीज़ क्यों नहीं हो पाई। फिर वो एक बंदा शर्मिंदा सा नहीं हो जाता दूसरे नज़र में, मेरे साथ वो वाला सीन हो जाता था। बट ऐसा ऐसा उम्र बढ़ती गई बढ़ती गई, तो फिर थोड़ा अंदाजा हुआ कि नहीं, हर चीज़ पहले से नहीं बकरी जाती, हर चीज़ को जो है वो सोच समझ के आगे पहुँचाया जाता है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 107.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर गया, आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सो अभी उसी के साथ प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक आल हुई थी, कमर्शियल ब्रेक उस पर मेरी रही आपसे मुलाकात, और साथ ही में इसी के साथ साथ अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी मेरे पास एक ट्रैक की फरमाइश मौजूद थी, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले उसको ही शामिल कर लिया जाए। उडारियाँ ओएसटी है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा। सबर थाम के रखिएगा दिलों को और ट्यून करके रखिएगा 107.1 एफएम को एंड डैप को।
1: दिल पे करार होया,
0: साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 7.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, जहाँ पर मेरा आपका साथ आया था ठीक और ठीक 2 बजे तक। सवाल उसी के साथ साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शामिल की, थोड़े से ट्रैक शामिल किए, और अभी उसी के साथ आपको वापसी पर आकर फिर से तंग करेंगे टॉपिक के हवाले से, जिसका स्टार्ट कर देते हैं। अभी मेरे पास फरमाइश आई थी कि प्लीज़ मेरी पसंद का भी चेक प्ले कर दें, सो मैं ज़रूर करूँगी, थोड़ा सा हौसला रखें। अभी मेरा जो लास्ट सेगमेंट है वो म्यूज़िक का ही है, तो म्यूज़िक में आप सबकी मर्ज़ी के प्ले करूँगी, डोंट यू वरी। बात हम कर रहे थे पर्सनल ग्रोथ के हवाले से, हमारा जो आज का टॉपिक है, खुद को कबूल करना। तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हर हामी से नफरत करें, बल्कि अपनी कमज़ोरियों को कबूल करके उन्हें बेहतर करने की कोशिश करें। फैसला करने की साइज इंसान को ज़िंदगी में, और फैसला दूसरों से पूछ कर नहीं किया करना चाहिए। अपनी सूरत हाल को समझ कर दुरुस्त फैसला करना भी शख्सियत की पहचान होती है। वक्त के साथ सब बदलना इंसान को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहल, मतलब मुझे ये वर्ड बोलने ही नहीं आता, आज तक मुझे ये बोलने ही नहीं हुआ। बहुत से वर्ड मतलब ऐसे होते हैं जिनको मैं नहीं पकड़ पाती, जिनको मैं नहीं भूल पाती, सो हम इसको गैर पे कर देते हैं। जो चीज़ पहले दुरुस्त थी, जरूरी नहीं है कि आज भी वो बेहतर हो। मुश्किल गुफ्तगू से ना भागना, ये इंसान की बड़ी मज़े की चीज़ होती है, और मुझे ये बड़े मज़े की चीज़ लगती है। कभी अपनी गलती तस्लीम करना, माजरत करना, या किसी मसले पर बात करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू इंसान को इमोशनली मेच्योर बनाती है, और मेच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। नॉन सीरियस रह के इंसान कब तक की ज़िंदगी गुजार सकता है। हर चीज़ को अहमियत देना ज़रूरी नहीं है, अपनी तवानाई उन कामों पर लग गए जो वाकई आपके मकसद के लिए अहम है। पर्सनल ग्रोथ का एक हिस्सा है कि दूसरों को माफ़ करना, मगर सबक याद रखना। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान आप हर चीज़ दोबारा बर्दाश्त करें। हाँ, अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो बर्दाश्त करनी पड़ जाएगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप माजी के बोझ से खुद को आज़ाद करके आगे बढ़ें, अपने वादे जो हैं वो खुद से पूरे करना। जब इंसान अपने लिए बनाई हुई छोटी छोटी प्लान, छोटे छोटे गोल्स पूरे करता है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना मजबूत होता है। हर दिन कुछ नया सीखना, एक नए स्किल, एक नया लफ्ज, एक नया तजुर्बा, या एक नई अच्छी आदत, छोटी मोटी आदत भी, किसी भी तरह की चीज़ हो जाए, सो वक्त के साथ बड़ी तब्दीली भी बन सकती है ये। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा वाक़या होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान छोटी छोटी तब्दीलियों से बदलती है, और साथ ही में रोज़ जाना, एक अच्छी आदत अपनाना, एक गलती से सबक सीखना, अपने रवैये को बेहतर करना, और अपने मकसद की तरफ एक कदम बढ़ाना, यही पर्सनल ग्रोथ है। असल तरक्की जो है ना, उस वक्त शुरू होती है जब इंसान जो है वो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर देता है। सो खुद को बेहतर बनाना, ये इंसान के अपने अख्तियार में होता है, ना कि दूसरों के अख्तियार में होता है। कई लोग जो है ना ऐसे होते हैं, मैं ऐसी कई लोगों में ऐसी सलाहियतें होती हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं पहचानते। नई चीज़ें आजमाने से इंसान को अपनी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं बेहतरी की। अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना, सिर्फ मसरूफ़ रहना काफ़ी नहीं होता, ये समझना भी ज़रूरी नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें कहाँ लेकर जा रहा है। रद्दअमल के बजाय जो है रिस्पॉन्स देना, हर बात का फ़ौरन जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लम्हे रुक कर सोचना और फिर जवाब देना मेच्योर बनने की निशानी होती है। खुद को दूसरों से साबित करने की ज़रूरत नहीं है, हर कामयाबी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि बाज़ूकात सबसे खूबसूरत कामयाबी वो होती है जब आप सिर्फ आप जानते हैं कि आप कितनी मेहनत से उस चीज़ को हासिल कर रहे हैं। अपनी आदत का आपको बेहतर पता होता है। हमारी रोज़मर्रा की छोटी आदतें जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शख्सियत और मुस्तकबिल बनती हैं। पर्सनल ग्रोथ का अंदाज़ा सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं होता, अब मुश्किल वक्त में इंसान अपने आप को कैसे संभालता है, कैसे लेकर चलता है, ये भी एक इस मतलब एक शख्सियत ही है। सो अपनी रफ्तार को कबूल करना, हर इंसान की तरक्की की रफ़्तार मुख्तलिफ होती है, कोई स्लो होती है, कोई फास्ट होती है, किसी और की रफ़्तार देख कर अपनी प्रोग्रेस को कम समझना मुनासिब नहीं होता। बहुत से लोग जो है इस चीज़ को बड़ा देखते हैं कि वो इस तरह का तो मैं उस तरह का नहीं हूँ। सो आई नोट उस तरह का कुछ भी नहीं होता, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतर होता है और बेहतर ही है।
मुझे नहीं मालूम कि कहना ये कहना कमज़ोरी नहीं है कि मतलब आप आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, मतलब ये एक बहादुरी होती है यार, किसी के बस बस की बात नहीं होती। पर्सनल ग्रोथ का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगता है कि उसे हर बहस जीतनी नहीं है, हर शख्स को खुश नहीं करना, हर बात का जवाब नहीं देना, कभी खामोश रहना, कभी अपनी गलती मान लेना, कभी रास्ता बदल लेना और कभी खुद को वक्त देना भी तरक्की है। उस वक्त ये चीज़ आती है आपके अंदर जब इंसान सिर्फ मिचोर होता है, क्योंकि असल अपनी ज़िंदगी बदलने की नहीं बल्कि अपनी शख्सियत को समझने की कोशिश करता है। मिच्योर होने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान को कभी ना कभी जो है वो अकल आ ही जाती है। अगर पर्सनल ग्रोथ के हवाले से बात की जाए तो खुद से किए गए वादे, हम दूसरों से किए हुए वादे पूरे करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने आप से किए गए कई वादे हम पूरे नहीं कर पाते और हम उनको अहम ही नहीं समझते। अपनी कमिटमेंट को निभाना शख्सियत को मजबूत करता है। जब आप अपने आप को आगे रखेंगे तब आप दूसरों को भी फर्स्ट पे रखेंगे, जब आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे तब आप दूसरों की भी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकेंगे। ज़िंदगी में कुछ बातों को नज़रअंदाज करना जो है वो ज़रूरी होता है, हर जगह पे जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, अपनी गलती को मान लेना, अगर इंसान खुद को हमेशा मैं ऐसा ही हो के अगर महदूद कर लेना कि मैं ऐसे ही हूँ तो आप मेरे साथ ऐसे ही रह के चले, नो, कभी कभार दूसरों के लिए चेंज होना पड़ता है। अच्छा, कभी कभार मुश्किल फैसलों से ही इंसान की शख्सियत बनती है। आसान फैसले ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं लेकिन मुश्किल और सोच समझ कर किए गए फैसले जो इंसान को मजबूत और ज़िम्मेदार बना देते हैं। हर वक्त मसरूफ़ रहना तरक्की नहीं होती, कभी कभार कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए, कभी रुक कर अपने हालात, गोल्स और अपनी ज़िंदगी की सिंध पर गौर करना भी ज़रूरी होता है। अपनी तवज्जो हर जगह तकसीम करने की बजाय उन लोगों कामों और मकसद को दें जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। माजी से सीखना जो है ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, माजी हमें सबक दे सकता है लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। असल काम ये है कि हम सबक लेकर आगे बढ़ जाएं। इंसान की सबसे बड़ी तरक्की उस वक्त शुरू होती है जब वो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर देता है। अपनी सोच को बेहतर बनाएं और अपनी आदतों को संवारें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने मकसद की तरफ मुसलसल कदम बढ़ाते जाएं, क्योंकि वक्त गुजारने के साथ सिर्फ उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, इंसान की समझ, शऊर और शख्सियत भी बेहतरीन होनी चाहिए।

कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में किसी नई नए शख्स नए मौके या नए रास्ते की नहीं बल्कि अपने अंदर एक नई सोच की ज़रूरत हमें होती है। पर्सनल ग्रोथ उस वक्त शुरू होती है जब इंसान खुद से ये सवाल करना शुरू करता है कि मैं हालात का इंतज़ार कब तक करूँगी और अपनी बेहतरी के लिए आगे क्या करना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए आज क्या कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी बदलने का बेहतरीन वक्त हमेशा आने वाले कल में नहीं होता बल्कि वो लम्हा होता है जब हम खुद को बेहतर बनाने का फ़ैसला कर लेते हैं। सो इसी के साथ साथ टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। अभी प्रोग्राम में जो है वो एक अदद ट्रैक का वक्त हुआ जाता है, मेरे पास जो फरमाइश थी उसको पूरा कर देते हैं। तो जिन लोगों ने आज और बी 107.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी का एहसास रखिए, बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: यू आर प्लेइंग फजान 97.1 FM।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। सो सॉरी, एक बार फिर से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बीजीएम सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं। खैर है, खैर खुशामदीद करते हैं एक बार फिर से आपको नए सेगमेंट में। हमारा अगला सेगमेंट फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट होता है म्यूजिक का। कमर्शियल ब्रेक के बाद मेरी रही आपसे मुलाकात और सेगमेंट की शुरुआत करेंगे बड़ी खूबसूरत से ट्रैक के साथ। अभी 5 दिन पहले मेरे ख्याल में हानिया आमिर का नया गाना रिलीज हुआ है, और हानिया आमिर इतनी अच्छी एक्टर, और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब हानिया आमिर भी गाना गाएंगी। हानिया आमिर ने भी जो है वो सिंगिंग की दुनिया में कदम रख दिया, तो क्यों ना फिर जो है वो हम हानिया आमिर की आवाज़ को भी सुन लें। इतने हम ट्रैक सुनते हैं तो फिर हानिया आमिर तो हमारी फेवरेट एक्टर है। हानिया आमिर बहुत से दिलों की जो है बहुत से लोगों की जान है, और इस ट्रैक के बाद जो है हानिया आमिर को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार मिल गया। हाँ, बट अगर इस ट्रैक को सुनने के बाद आपने मेरे शो को और पसंद कर दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, आपने तो मुझे जाने ही नहीं देना 2 घंटे के बाद। मजाक आपके साथ जारी रहेगा। भी हानिया आमिर की आवाज़ को सुनते हैं, इसके उस पर मेरी रहेगी आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फॉर 107.1 एफएम एंड ऐप।
1: कहंदे रहंदे ने मैं सुन दी हां,
0: साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज। वाला ये मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होगा बल्कि अब गानों की लिस्ट जो है वो निकलने वाली है। सो तकरीबन मेरे आपके दरमियान काफ़ी कम वक्त रह चुका है और अभी मेरे पास फरमाइशें बहुत सारी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको किस तरह से पूरा करूँ। हाँ, हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जारी रहेगी, अगर आप वेट कर सकते हैं उनको फरमाइश बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम। या फिर आप मेरे प्रोग्राम में प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर आपको कल का ही वेट करना पड़ेगा। वही बात आ गई कि फिर से उसी ट्रैक की फरमाइश आन पहुंची है जो मैंने पहले भी प्रोग्राम में शामिल किया था। यार आप लोग क्या करते हैं, मतलब एक टाइम पे फिर एक ही ट्रैक प्ले करते हैं ना। अभी मुझे किसी और पर्सन ने जो है ना इसी वाले ट्रैक को प्ले करने का बोल दिया। अभी बोल दिया तो फिर प्ले तो करना पड़ेगा। आइए चलते हैं इस ट्रैक की जानिब, एक बार से सुनिएगा, दिलों को थाम के रखिएगा, ट्यून करके रखिएगा 97.1 FM को एंड डैप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 107.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवाल एक बार फिर से इस ट्रैक को प्ले कर दिया और आपने सुना भी होगा, मजा भी आया होगा। लेकिन उसी के साथ साथ मजे की बात बताऊँ, मैं भी इस ट्रैक को सुन सुन के बोर नहीं होती, क्योंकि मुझे भी ये ट्रैक जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही पसंद आ गया। वैसे मैंने कभी ये ट्रैक सुना नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में मुझे इसको प्ले कर करके ना अब इसको सुनने की आदत पड़ी है।

0: नहीं, अगर आप मुझे ये चेक डेडिकेट करेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मैं मज़ीद आगे 2 घंटे ले लूँगी। खैर मजाक तो है, आपके साथ चलता ही रहेगा। लेकिन प्रोग्राम में शामिल का तरीका आपको अगेन बता देते हैं, जिन्हें लोगों ने अभी 107.1 FM को ट्यून किया, नंबर है 01157100971। इस नंबर को कीजिएगा सेव, सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। हाँ, आप यूँ कर सकते हैं कि आप कल पे फरमाइश है मुझे अपनी भेज दीजिएगा। अभी तो है समय आन पहुँचा है दूरियों का, तो क्यों ना थोड़ा सा दुखी वाला माहौल बना ही लेती हूँ अब मैं। वैसे मैंने नोटिस किया है कि गाने वगैरह तो मैं भी अच्छे ही गा लेती हूँ। हाँ, बस थोड़ी सी आवाज़ अगर और अच्छी हो जाती तो क्या ही कमाल की बात थी।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।
0: उफ, 90s के ट्रैक को प्ले करके एक अलग ही वाइब।

आपने तो मुझे ट्रैक डेडिकेट करना नहीं था, लेकिन खैर मैंने खुद ही अपने आप को डेडिकेट कर लिया। अभी हमें भी शायद मेरे पर्सनल नंबर पे फरमाइश आई हो, लेकिन मैं अभी उसको नहीं देख पा रही क्योंकि वक्त बहुत ही सख्त चल रहा है और मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा।

अच्छा मैं सोचती हूँ कि मतलब ये लोग एक्टिंग कैसे ही करते होंगे, एक तो 90s के ट्रैक, ऊपर से इनकी एक्टिंग फल्ला, मुझे देख के बड़ी हंसी भी आती है लेकिन मतलब क्या सोच कर तो किस तरह से ये लोग एक्टिंग करते होंगे, वो चल के जा रही है और वो उधर से आ जाए, मतलब कुछ समझ नहीं आता। रोमांटिक का तो होता नहीं लेकिन हंसी बहुत आती है मुझे। अभी आप सीरियसली अगर आप इस लड़की को देख लेना जो वीडियो भी मेरे सामने चल रही है, वो ऐसे शॉक्ड हुई है, उसकी आंखें ऐसे खुली हुई है कि मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है। मतलब वो पंजाबी च कहीं नहीं अखा ताड़े लग जानी है, उस तरह का कोई सीन बने है। बट ये इन्होंने थोड़ा रोमांटिक वे में बनाया हुआ, आई डोंट नो कि इसमें रोमांटिक है क्या।

अच्छा, अभी रिसेंटली जो है ये मैंने इस चीज़ को देखा है, मतलब अभी कोई ड्रामा आया हुआ है दरिंदी जात, और इसके ट्रैक बहुत ज़्यादा लोग सुने जा रहे हैं। शायद आपने नोटिस भी किया होगा, काफ़ी ज़्यादा रेडियो पे इधर प्रोग्राम में प्ले भी होते हैं। बट मैंने अभी तक इस ट्रैक को सुना नहीं है, लेकिन आपके साथ मिलकर इसको सुनेंगे। जाते जाते सवाल, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: Get ready to move.
1: It's all about the beats.
2: Wow, FM.
3: Teddy, zara. Ye commercial to sun le.
4: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
5: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
6: We're not having that, are we?
5: No. Oi, hear that? It's water and cans.
7: And fix those drips and drops.
8: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together, it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
12: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है? पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।

कुछ लोग ते असा खाली जिल्ला तखने अपनी धरती ते मिट्टी नी गल होनी ते साढ़े जहन च ये गल असनी के पठवार शायद कोई चार पांच जिलिया ना नाम है जेड़ा के अटक ते चकवाल जेलम ते पिंडी ते अजकल इस्लामाबाद भी है, लेकिन इन्हां शहरां नी जिहड़ियां जड़ां ना वह बहुत डूंगियां ना, वह बहुत थल्ले तक गईयां आ। संगियों सुनी दसा कि पठवार ऐसा इलाका वै कि जोड़े कदीम तरीन इंसानी तारीख ने आसार मिलने वह पठवार चू मिलने तो जिसना जीना जागड़ा सबूत जोड़ा है वह टैक्सला शहर है जड़ा कि पठवारनी शान है, पठवारनी पहचान है। तो जे पठवारनी पहचान की गल होनी भी तो फिर असं दरियाए सवां किस तरह भुली सकने हैं। अज ने इस प्रोग्राम में दरियाए सवां च केड़े केड़े राज छुपे वे, पठवार ना इसना संग कितना पुराना वा ये गल भी कर सा। तो संगी इतनी ज़्यादा गल्लां फोन पा के प्रोग्राम में शुरू विच तुसां की अंदाजा होई गया है कि अज असा अज ने प्रोग्राम विच कै गप शप करने आस्तै जुले हाँ। तो जे पठवार नी गल होवे तो शेर व शायरी नी गल ना होवे, पठवार ने लोक म्यूजिक नी गल ना होवे, माइयां ते ठप्पियां नी गल ना होवे, ये किस तरह होई सकना। पठवार ने वह रवायती माइये ते वह लोक गीत जेड़े साढ़े दादे पड़दादे नाने हरी ताए हरी चाचे सारे सुनने होने से, आज वो भी असा इंशाल्लाह रली ते सुनसा।

ओके गल काफ़ी है ना। तो वापस हसने जी असं अपने लोक अदब उप्पर, ते इसने च माहिये होने, डोले होने, लोरियां होनियां, छले होने, ते इक लोक इजहार कहने के मोहब्बत ना इजहार होना, कहानी बयान करने ना एक वसफ होना, ते बस इस तरह ही लोक सदियां तू बोलने हसने पे। तो यह जी शेर व शायरी है, ये जिसलै किताबों में नहीं सी, तो इस तू पहले लोगों ने दिलों में होनी सी। कोई खेतों में कम करना पिया, बाड़ी में कुछ लगा वा, बाड़ी बाहना पिया, तो नाल उस आख्या चलो गाना भी गाई किन्ने, जड़ा कोई उस लोक गीत उसकी याद सी। तो कोई सफर, तो कोई शादी विच, तो कोई जुदाई विच, कोई खुशी नाल, तो कोई गमे नाल, अपना अपना दुख सुख फोलना उसी। तो वैसे तुसां की केड़ा कोई माइया गीत जड़ा तुसां की याद होवे, तुसां आने उस भैया रा, ये मिगी बहुत चंगा लगना है। बहरहाल माइया गीतां नी गल है जनाब, तो तुसां की बगैर किसी इंतजार तो तुसां की माइया जड़ा उसां की सुनाने आ। तो उम्मीद है कि तुसां की ये माइये जरूर पसंद आसन, तो ऐसा इंजॉय करो पठवारी माइये, उस तो बाद तुसां नाल वापस अचित फिर गपशप लाने आ, कुरै ना जाए।

0: Attention.
1: Property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं
2: सलासा ट्यूशन सेंटर
3: जी हाँ इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता
3: मसला ही कोई नहीं सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ
4: जी हाँ आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231 कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

इक बारी फिर जनाब तुसां ने अपने शो पटवारी बैठक च तुसां गी खुश आमदीद आखने आ जनाब। जे तुसां हुण साढ़े गी ज्वाइन कीता तां मैं तुसां ना अपना दोस्त, तुसां ना होस्ट, तुसां ना भरा बासत अली राजा। ते तुसां सुनने पे हो जनाब पटवारी बैठक जड़ा कि लाइव जा रहा नोटिंगम यूके तो। साढ़े एफ एम नाम है रेडियो फजा 97.1 ते नाल तुसां इसकी डैब पर भी सुनी सकने हो। ते जे तुसां हाले जियां असां की वैबसाइट पर विजिट नहीं किया तो वैबसाइट पर जाइए भी सुनी सकने हो। इस वैबसाइट ना यह फायदा आ गया अगर तुम नोटिंगम शायर तू बाहर भी जाने हो तो फिर भी तुम साढ़े की बिल्कुल इस तरह जिस तरह ने ना कड़क जी आवाज़ इतना साढ़े की सुन सो। तो भावें पाकिस्तान बैठे हो तो भावें कश्मीर तो भावें टैक्सला तो भावें गुजरखान जिते भी कुछ असं बैठे हो जनाब सो साड़ी आवाज़ जी सुनी सकने हो वैबसाइट के जरिए। अजकल ना जदीद दौर है, सिग्नल ना कोई इशू ऐसा कोई नहीं होना। तो अज ना जो सा टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक से जो अहम मौजू से जिसने असं गल करने पे सके पटवारनी तारीख पर असं गल की तो काफ़ी सारिया गल् हुई हूँ। जी आखिरी गल असं बाई सी जनाब वो सी एक लोक अदबने वाले नाल के जड़े माहिए तो टप्पे होने तो वह माहिए एक मैं संगी सुनाया सी। उस तो बाद एक जबरदस्त किस्म ने पटवारी अदबने वाले नाल एक अगली गल जी है वह टुरनी भी कि पटवार ना जो अज ना जदीद अदब है वह कुछ जहाँ पहुँचया तो उसनी इब्तदा कुथू हुई। एक गल बहुत जरूरी है इस पटवारी अदब प्रश्न तो पहले कि वह कौमा हमेशा कामयाब होनी कि जड़ियाँ अपनी जबान नाल ते अपने लफ्जा नाल ते अपने अदब नाल जुड़िया होनिया। तो लिहाजा असं भावें जिथे मर्जी हाँ जिथे कुरे असं वसने पे हाँ परदेस चाँ या देस चाँ तो असं की चाहना वा कि असं अपनी जबान पटवारी जबान बोलीए। इसने नाल ये उसी कि आसानी पहचान उसी जिसल बंदा बोलना तो फिर पता ले जाना कि ये केड़े इलाके ना वा। तो क्योंकि असा ने प्रोग्राम जड़ा पटवारी जबान है तो इस वजह तो असं ये जाने कि पटवारी जबान नहीं तरवीज आस्तै पटवारी जबान ने वादे आस्तै जरूर जड़ी है वो गलबात करनी चाहिए है क्योंकि ये कोई असं पटवारी जबान पर एहसान ना करने पे बल्कि ये साढ़े पर कर्ज है पटवारी ना उस माँ बोली ना जेड़े असं वो लफ्ज़ बचपन बोली दे इन लफ्ज़ा ने सारे किनी दे अज असं एडिया गल् करने जोगे हुए हैं। तो संगी हूँ असं गल करने जो जदीद पटवारी अदब है किताबों की शक्ल कदू आया तो इस आगाज़ जड़ा वो 20वीं सदी ईस्वी विच होया मतलब इतनी पुरानी गल नहीं है। इस तू पहले लोग जबानी याद करने होने से सारे शेर भी तो सारिया गल्लां बातां भी सारिया जड़ियां वो जबानी सीना बसीना जिस तरह अगर सौगी दस्या वो मुंतकिल होनिया सियाँ नानियाँ दादियाँ सुनानियाँ सियाँ बच्चियाँ की तो बच्चे अगे अपनी नस्ल की तो एक नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलना होना सी। तो इसकी जड़ी नुमाया शक्ल है वह जिसलै मिली तो उसने जड़ा सारिया तो नुमाया और पहला मुस्तरद ना साढ़े सामने तारीख ने वर्क्या पर असना वह ना है जनाब बाकी सदीकी और ना जड़े लोग अदब नाल लगाव रखने उन्हां की पता है कि बाकी सदीकी पाकिस्तान ने मत सिर्फ पटवार ने गल ना करना पे पाकिस्तान ने अदबी हल्कियां विच एक बहुत बड़ा नाँ सी जिन्ना ना सिर्फ पटवारी जबान बल्कि पंजाबी और उर्दू जबान भी उन्हां बहुत ही शानदार शायरी की थी। तो पटवार ने खुशनसीबी सी कि बाकी सदीकी साहब उन्हां पटवारी जबान भी शेर व शायरी ना सिर्फ की थी बल्कि पहला एक मुस्तनद उन्होंने जड़ा किताबी मजमू है वो भी साढ़े की तखने की मिली। उन्होंने किताब ना नाम है कच्चे घड़े ते कच्चे घड़े जड़े वो उन्होंने किताब अपनी लिखी पटवारी जबान ते उन्होंने कलाम आम इंसान की गल होनी सी ते दुख सुख दुखा सुखा की गल होनी सी लोगों की जिंदगी किस तरह बसर होनी मुहब्बत ने असरात भी उस उन्होंने शेर व शायरी बच्चे नज़र रसने
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 'ਚ 2-4-5 ਨਾਂ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਦਰ ਚਾਣੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮਾਦਰ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਾਸਨਾ ਔਰ ਅਖਤਰ ਇਮਾਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਖਤਰ ਇਮਾਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਖਿਤਾ ਪਠਵਾਰਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਅਖਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਠਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਠਵਾਰੀ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਸਾਲ, ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੀਦ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲ ਆਖਣੇ ਪਏ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਮ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੀਦ ਪਠਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਲਿਖੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਪਠਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਦੂਏ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

जनाब एक बार फिर सुन के आने जी खुश आमदी जनाब सुन तखने पर सुना अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक ते तुसना अपना बासद अली राजा एक दफा फिर सुनी खिदमत हाजिर है जनाबे अली असा गल करने पे पटवारनी तारीख जड़ा गया सड़ा मौजू सी ते काफ़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू जी है वो साड़ी जारी है पटवारनी तारीख ने वाले नाल ते पटवारी अदब ने वाले नाल भी असा गल की पटवारी अदब किस तरह परवान चढ़िया और क्या क्या चीज़ा हैं जड़ियाँ पटवारी अदब हूँ आनिया पियाँ ते लेकिन इतने एक गल जी है वो बड़ी जरूरी है करने वाली वो ये है कि लोग कहानियों ते तारीख फर्क जड़ा वह भी आना ते अक्सर मतलब इतने थोड़ी जी कह आने के बंदे थोड़े जे ना हो जाने भाई यार ये लोग कहानी ते तारीख ही मिक्स ना कुरा कसा करी छोड़ी है ना कुरा इस चक्कर ना हो जाइए तो असं अपनी तरफों कोशिश कर सके साढ़े प्लेटफॉर्म उपर जड़ियाँ चीज़ा असा हिस्ट्री ने या तारीख ने बारे में पेश करिए तारीखी रेफरेंस असा देिए तो जड़ियाँ लोग कहानियां उसकी असं लोग कहानी ने तौर पर ही तुसा की सुनाई है या उसकी दसी है ते लोग कहानियां विचों की पता है कि मुख्तलिफ कहानियां होनियां लोगों ने मुख्तलिफ अपने अपने अंदाज होने उसकी बयान करने ने कोई बादशाह वालियां स्टोरियां कहानियां सुनाना कोई किसे महाराजे नहीं कोई किसे महारानी नहीं ते कोई किस तरह मतलब कोई जंगल ना कोई किस्सा सुनासी कोई ग्रां नहीं कोई गप शप सुनासी तो यह सारिया बजुर्गों दल होनियाँ तो यह साड़ी सकाफत है उसना एक हिस्सा वै साड़ी यादाश्त है उसना एक हिस्सा वै असा इसकी अपनी तहजीब चूँ तो अपने जड़ा साड़ा कहने के पटवारी विरसा वा उसने भी असा इसकी कड़ी ना सकने असा दोवें चीज़ा ना बराबर एहतराम करने जड़ी पटवारी नी तारीख है उसना भी तो जड़ा पटवारी नी लोक दास्तान जड़ियाँ गप्पा शप्पा ये बच्चों की इंटरटेन करने बच्चों की सुनाने बच्चे खुश हो जाने नानी साढ़े की आए कहानी सुनाओ ना दादी अम्मा साढ़े की कहानी सुनाओ वैसे हूँ अच्छा लोग आने भाई नानिया दादिया भी थोड़िया जी मॉडर्न आई गई हूँ हूँ वो लोग कहानियां शायद नहीं रही लेकिन चलो कोई गल नहीं असा ना मकसद ही है कि अगर किसी पास थोड़ी जी कसर रहेगी तो असा हूँ उस उन्होंने सारिया गलों की दोबारा दोहराइए ताकि सारे बंदे जड़े ना वो एक बार फिर मुंडू छुनो ए लोग कहानियां तो यह अपने दोतरिया पोतरिया की सुनानियां शुरू करी देन वैसे बड़े खुश नसीब सन वो लोग जिन्हें बचपन ना ये सारिया चीज़ा उन्होंने कह आने के तकियां इंजॉय किया ने तो यकीन होना कि खुशकिस्मत लोग सन जो इस टेक्नोलॉजी ने दौर तो पहले आए न उन्होंने उस पटवार ने उस लाइफ की भरपूर तरीके इंजॉय किया

ते बहरहाल पटवारी जबान नी वादे आस्तै तुसा अपनी अपनी जाई जिथे जिथे भी हो परदेश हो या देश हो तुसा जो कुछ करी सकने हो जरूर करो। ते पटवारी जबान साड़ी पहचान है ते असां गी उस हवाले नाल गलबात जिहड़ी है लाजमी करनी चाहिए है अपने बच्चों की सिखानी चाहिए ने ये गल्लां। ते नाल जे तुसा पटवारी नाल मुहब्बत करने हो ते फिर पटवारी बोलसो ते तां ही गल बनसी। ते ये लाजमी नहीं होना कि तुसा मतलब कि जिहड़े दुए अपने दफ्तरी मामलात है उन्हां गी बंदा छोड़द अंग्रेजी बोलना छोड़द उर्दू बोलना छोड़द। हर जबान ने एक अपनी जही अहमियत है लेकिन जिहड़ी तुसां नी अपनी जबान है जिहड़ी तुसां गी अपनी मिट्टी नाल जोड़नी है उसने नाल तुसां नाल जुड़िया होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा जी पटवार ने लोगों की गुरबाणियों की गल असा ना करिए यह नहीं हो सकना साढ़े आज ने इस प्रोग्राम ना एक असा इसने असा स्पेशल असा रखिया सी कि यार हिजरत जड़ी है जिसकी तुसा आखी सकने हो कि हिजरत विच पटवार ने लोगों का क्या किरदार है चाहे वह 1947 की हिजरत हो जिस टाइम पर रसकीत नी तकसीम हुई है या उस तो बाद जो लोग रोज़गार ने सिलसिले में परदेश आए वो उन्होंने कितना एक रोल है जो परदेश रहने पर लोग या इसकी पटवार की तारीख जी है वो किस तरह तकनी है। तो जोड़े लोग मिगी इंग्लैंड तो सुनने पे अपना इंग्लिस्तान तो सुनने पे जनाब उन्हों की तो पता ही है कि वह परदेश और परदेश की जी जिंदगी होनी वो इंसान की कुछ देनी तो है लेकिन उसने बदले में उसने को कुछ ना कुछ किन्नी भी है। तो असं गल करने पैसा 1947 नहीं तो 1947 जिसलै बरसकीर ने तकसीम हुई तो उस टाइम बहुत सारे जड़े पटवार ने लोग सन खानदान सन वो भी इस तकसीम मुतासर होए उन्होंने कुछ खानदान ने अफराद जड़े वो इधरों माइग्रेट पाकिस्तान तो वो इंडिया वाले पास गए हो सन तो कुछ खानदान जड़े वो इंडिया तो इधर भी आए न। असं अक्सर अपने महल्लों में ग्रावों में ये गल्लां सुनने भाई साढ़े दादा होरी या साढ़े पड़दादा होरी वो इजरत करी तो इत्थे आए सन ते उन्हें भी एक बड़ी कुर्बानी दी इस इलाके की इसने वकार की बहाल करने में और इस इलाके दी रौनक बहाल रखने में। तो बिल्कुल अपना कारोबार छोड़ना जड़ा ना ये सौखा नहीं होना मतलब तुसा ना एक शहर में कह आने के फैमिली होनी तुसा नी खानदान होना तुसा ने भैन भ्रा होने तुसा नी उत्थे मतलब जिमीबाड़ी होनी हर काम कारोबार तुसा ना उत्थे होना ते एक धड़ा तुसा कि अगर वह जगह छोड़नी पई किछ ते ये काफ़ी मुश्किल होना ये परदेस या हिजरत जड़ी है ये औखा काम आ लेकिन पटवार ने लोग बड़े दिल आए इन्ना उसने च भी अपना भरपूर जड़ा वो हिसाब आया ते तारीख ने इस वर्के पर भी इन्ना अपना नाम लिखवाया। तो फिर उस तो बाद रोज़गार ने सिलसिले 1950 तो किनी 1960 एक बड़ी तादाद लोग जड़े वो पटवार तो आए न बरतानिया में आए न उसने च पटवार नाल तुसा कश्मीर ना जड़ा एरिया है मीरपुर और उसने मलिका जितने भी इलाके न उसने च बहुत सारे लोग जड़े न बहुत सारे खानदान जड़े न उन्हें अपने रोज़गार ने सिलसिले में उन्हें बरतानिया रुख किया और जड़े यूरोपियन ममालिक उत्थे वो गए न अपने कमें काजा ने सिलसिले में जड़ा कि इब्तदाई तौर पर एक मुश्किल काम होना क्योंकि ये मैं इस तरह भी आखी सकना वा भाई मैं आपो भी कुछ अरसा पहले जल्द पाकिस्तान तो इतने आया तो ये एक जिंदगी ने चंद बड़िया फैसलों में एक ऐसा फैसला होना जड़ा बंदे की करने कई बार सोचना पैना कोई सियाने बंद मशवरा भी करना पैना भाई मैं ये कम करना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर हर बंदा अपने एक कहने कि जिस तरह उसने तुसाने वाबस्तगी होनी दिल लगी होनी उस हिसाब जो तुसा राय मशवरा देसी सारे कहने कि उसने जड़े भी कोई फायदे नुकसान है उस तुसांगी बासी भाई जासें ते आए घट आई ते आए वाधा ही। तो फिर आखिरकार बंदा थकी किन्ना भाई यार माड़े की किड़े पासे जाना तो फिर वह बंदा उस पासे नाराज़

ते परदेस च बंदा असमां जारी गल्ल रोजी रोटी आस्तै असमां ते जिसलै रोजी रोटी दी गल्ल होवै ते तुसें गी इक गीत सनाने आं जनाब के नई मजारवी ने गीत है जिसने च ओह् आखने न के साढ़ी रोजी रोटी विच परदेसा ने ते इस गीत की तुसां इंजॉय करो ते फिर उस तो बाद तुसां नाल मिलने आं जनाब सलामत रहो इस गाने तो बाद फिर सुनने मुलाकात

0: gossip-hire at hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

जी जनाब, तो एक बार फिर सुन गया अपने प्रोग्राम तुसाने प्रोग्राम पटवारी बैठक च तुसा की खुश आमदीद आखने जी। तो हूँ सा प्रोग्राम जरा वो अपने बिल्कुल आखिरी टाइम पर भी पहुंची गया। असाना तुसा ना संघ होना त्रै तो कीता पांच बजे तक। तो जे तुसा हूँ ही सड़क ज्वाइन किया तो फिर चलो तुसा ये भाई छोड़ने के जनाब असा इस टाइम लाइव हसने पे नॉटिंगम तो रेडियो फजा परसों सड़क सुनने पे जिसनी एफ एम नीटी होने 97.1 ते नाल डैप पर भी तुम साढ़े की सुनी सकने हो। अज का टॉपिक साड़ा बड़ा खास टॉपिक सी जड़ा कि पटवारी तहजीब और पटवारी तारीख ने हवाले नाल सी। उसने काफ़ी सारिया चीज़ा जड़िया असा अज ने इस गुफ्तगू विच कोशिश कीतिया कि अपने सुनने वाले जड़े साढ़े सोने भैन भरा है असा उन्होंने तक इन्होंने गल्ला की पहुँचाई है। बहुत सारिया गल्ला जिहड़ियां अज ने प्रोग्राम विच मैं बजाते खुद सीखियां ते उम्मीद है कि तुसा तक भी अगर कोई नवी गल पहुंची उसी ते ये चंगी गल है साढ़े प्रोग्राम नहीं है साड़ी खुशकिस्मती है। ते अज ने प्रोग्राम विच असा पटवार की सिर्फ एक नक्शे पर मौजूद खिते ने तौर पर नहीं तकिया बल्कि असा कोशिश की थी कि असा उसकी ऐसी नज़र नाल तकी है जिस विच आम तौर पर असा उस तरीके नाल शायद ना सोचने ना असा थकने हैं कि असा तकिया कि कदीम पत्थर ने औजार जड़े ना वह भी पटवार नी तारीख ना हिस्सा न। तो 20 साल पिछे जाने वाले इंसानी आसार की जी तहकीक है उसने भी पटवार ना बड़ा अहम किरदार है। तो उस तो बाद दरियाए सवां पटवार ना पुराना संगी पहला संगी पटवार ना दरियाए सवां क्या बात है जड़ा पटवार नाल है उसने बारे भी असं काफ़ी सारिया गल्लां कीतियां कि दरियाए सवां ने पटवार ने कितने राज है जड़े दरियाए सवां विच कहने के उस अपने सीने विच समोए वे ते जिथे जाना वो पटवार ने राजा की तो पटवार दी गल्लां की अपने नाल किन्नी ते टुरना रहना। तो एक तारीखी दरिया है जड़ा कि पटवार नी पहचान है। तो 6वीं सदी कबल अज़ मसीह ना जड़ा बिड़ माउंड है वह भी असा अज ने इस मौजू विच अज ने इस प्रोग्राम विच असा कवर किया। तो 326 कबल अज़ मसीह विच जिसले सिकंदर आजम इत्थे पटवार नी इसने विच आया धरती पर आया तो उसने पर भी असा गलबात की। 321 कबल मसीह ना जड़ा मौरिया दौरे हुकूमत है उसकी भी असा अज डिस्कस किया असा तकिया। असा अज जिस अखी नाल असा तकना पे सा जनाब पटवार की असा उस अखी नाल असा यह भी तकिया कि 1वीं सदी ईस्वी ने जड़ा दूसरी सदी कबल मसीह ना जड़ा सिरकप है वह भी असा सिरकप है वह भी असा तकिया। इस तो बाद 1वीं सदी ईस्वी ना सिर सुख ना इलाका जड़ा टैक्सला विच मौजूद है वह भी असा तारीखी शहर ने वाले नाल गुफ्तगू की। वैसे आम तौर पर असा एडिया गल्ला कुत्थे बाने या एडा कुछ असा कुत्थे सोचने अपने जिस इलाके असा रहने पे जिथे असा पैदा हुए हैं जिथे असा जम पल हुई। तो असा अज एक स्पेशल प्रोग्राम जड़ा वो अपने नाजरीन अपने सामीन असा ये खास तौर पर तरतीब दिता ताकि जड़ा साड़ा मिट्टी नाल अपने पटवार नाल कनैक्शन है जड़ा साड़ा एक तलक है जड़ा साड़ा एक रबत है वह जुड़िया रवे बल्कि ना सिर्फ जुड़िया रवे बल्कि वह पहले नालों ज़्यादा मजबूत है गूढ़ा होवे। फिर उस तो बाद असा कुशान दौर भी तकिया तो गंधारा ना जड़ा फन टैक्सला नी सरजमीन पर साढ़े की नज़र रसना उसने बारे भी असा गलबात की। फिर असा जिसलै इतनियां गल्लां कीतियां तो जड़ी पटवारनी रीत है पटवारनी पहचान है वह लोक जिंदगी है जड़ी साढ़े प्यू दादे ते साढ़े नसल तर नसल एक चलिया आसना पे कल्चर उसने बारे च भी असा गल की जिसने च माइए ते डोले ते बीत माइए डोले ते पटवारी जबान ने वह पुराने जड़ा शेर ना एक स्टाइल है पटवारी ने जड़े शेर तुसेंगी पता है कि ये पूरी दुनिया में सुने जाने न बड़े नामवर शोरा न बड़े नामवर शेर पढ़ने वाले लोग है जड़े पटवारी नी तहजीब ना एक हिस्सा न पटवार नी जड़ी हिस्ट्री है उसना वो हिस्सा न। तो जदीद शायरी जड़ी है पटवारनी उसने हवाले नाल भी असा अज ने इस प्रोग्राम विच डिस्कशन की।
ते ए प्रोग्राम जड़ा वो एक बेहतरीन रंग इस प्रोग्राम की असा देने की कोशिश की थी। असा आख्या कि कोई ऐसी गल ना होवे जड़ी पटवारने वाले नाल साढ़े सामने आई होवे, असा उसकी डिस्कस ना करिए, जरूर करिए, जड़ी लोगों की आपे च जोड़नी, जड़ी दोबारा लोगों की याद करावे कि पटवार जड़ा वो एक ऐसी तारीखी धरती है जड़ी कोई अजकल नहीं पैदावार नहीं बल्कि लखा साल इसनी तारीख है। तो जनाब उस तो बाद असैंड पर गल की परदेस नहीं कि परदेस आस्तै पटवार ने लोकां कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दित्तियां ते ये सब जड़े ने

0: diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं खैर तो है
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी
2: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया
1: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी
2: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है
1: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर दे रहे सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने
2: चलें उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा
1: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम
2: जबरदस्त मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए नंबर क्या है
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है 01156713677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

सलाम करने की आरजू थी, इधर जो देखो सलाम कर ले। मोहब्बतों से गुंधे और यकीन से बंधे रिश्तों के साथ एक बार फिर से 97.1 FM पर मैं हूँ फाखरा मिर्जा, हलूस भरा मोहब्बतों भरा सलाम पेश करते हुए आप सबको खुशामदीद कहेंगे। यकीनन आप लोग हमें सुन रहे और साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है मुझे। आज का मौसम कुछ ऐसा है कि सुबह जब आंख खुली और अपनी बेडरूम के कर्टन पीछे किए तो ऐसा लगा कि जैसे आज पूरा दिन सूरज हमारे साथ आंख नहीं मिलाएगा। और फिर कुछ घंटों के बाद धूप भी चमकी, बारिश भी हुई, हवाएं भी चली और एक मोतदिल सा मौसम हमें देखने को और महसूस करने को मिला। और दिल बेख्तियार कह उठा, फाबिया ये लाए रब्बी कुमा तो खसीबान। और मौसमों की क्या कहते कि मंजिलों की बात छोड़ो, किसने पाई मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा, एक हम सफर अच्छा लगा। सो मौसम भी कुछ ऐसे ही हैं, हम सफरों की तरह, कभी किसी रंग में, कभी किसी ढंग में और कभी किसी अदा के साथ आपके साथ साथ चलते रहते हैं। सो जी आज के इस शो में भी आप हमारे साथ हैं, ये तो हमें पूरा यकीन है, क्योंकि आवाज़ का रिश्ता है जो कि बहुत मजबूत और बहुत ही पक्का सा रिश्ता। और ये रिश्ता उस वक्त और ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब आप लोग हमें कॉल करते हैं और शिकायत भी करते हैं कि हम नंबर रिपीट नहीं करते। तो नंबर है जी हमारा 01157100097, इस पर आप शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए www.radiofaza.org.uk पर भी सुन सकते हैं। घरों में सुनने वाले, टैक्सियों में, गाड़ियों में पैदल चलने वाले या दूर दराज मुल्कों में जितने भी लोग सुन रहे सबको आदाब बजा लाती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। और उसके साथ क्या कहेंगे, जिंदगी खूबसूरत है और ये प्यारा सा गीत उसी खूबसूरत सी जिंदगी के नाम करते हैं जो कि हमें तो बहुत खूबसूरत लगी। उसका हर रंग, हर ढंग, हर अदा, हर चीज उसकी एक नया रंग और नया चेहरा लेकर जब सामने आई तो हम बेख्तियार कह उठे जिंदगी खूबसूरत है। सो ये प्यारा सा गीत उसी खूबसूरत सी जिंदगी के नाम करते हुए आप सबको डेडिकेट करते हैं।

और जी क्या कहते हैं कि इधर जो देखो सलाम कर लें। और सलाम आपको पता है क्या होता है, हम लोग जब किसी को कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु तो ये बहुत सारी दुआएं होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं जो हम एक मिलने वाले को देते हैं। और फिर जब वो वापसी पर हमें कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु तो हमारी दुआ के बदले में वो भी हमें दुआ देते हैं। सो ये कितना खूबसूरत इजहार है एक दूसरे से मुलाकात पर हाथ मिलाना, गले मिलना, दुआ देना। सो कभी भी इसमें कंजूसी मत किया करें, दुआ एक दूसरे को मुलाकात पर एक स्माइल के साथ सलाम करने में पहल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग जब मुलाकात करते हैं देख के इधर उधर हो जाते हैं कि हमें सलाम ना करनी पड़े, तो ज़रा सोचिएगा कि आप कितनी बड़ी दुआओं से और ब्लेसिंग से अपने आप को महरूम कर लेते हैं।

जी हाँ, रेडियो फजा 97.1 FM और तुम्हारी महफिल में आ गए हैं। इधर जो देखो सलाम कर लें, शुक्रिया अदा करेंगे जो जिन्होंने हमसे पहले प्रोग्राम किया। यकीनन बहुत अच्छा प्रोग्राम आप सबने सुना और वो दो घंटे आपके बहुत अच्छे गुजरे होंगे। और शुक्रिया अदा करेंगे उनका भी जिन्होंने आपका दो घंटे साथ दिया। अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, और हमारे प्रोग्राम के बाद उमर अपना प्रोग्राम करते हैं, शायद वो छुट्टी पर हैं। आज उनका प्रोग्राम आप नहीं सुन पाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा था, बल्कि इफ्तिहार इफ़ी ने कहा था, है ना, हम किसी का नाम क्यों लें। इफ्तिहार इफ़ी ने कहा था कि अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराई को बयां करो तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, खफीफ लम्हों की लरसशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी हबासतों को, हमारी सारी हमाकतों को। वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो, वो कह रहा है कि चुप ही रहना।

और जी ये गीत जो आप सुन रहे हैं ये ऐश्वर्या रॉय उन पर फिल्माया गया था और अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ ताल से ताल मिला।

0: और समी, क्या बात कहें आपसे, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, और कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। हाँ, हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, और ये मोहब्बत सिर्फ एक जैसे एक मोहब्बत लड़की लड़के वाली नहीं होती, ये मोहब्बतों के 100 रंग होते हैं, मोहब्बतों के कई खाने हैं, और हर खाने में अलग मोहब्बत होती है। अपने मज़हब से मोहब्बत, कल्चर से मोहब्बत, अपने कोलीग्स जो आपके साथ होती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, नर्सरी से लेकर बड़े होने तक बहुत सारी आपकी दोस्त बनती हैं, उनसे अलग मोहब्बत होती है। अपने जो रिश्ते होते हैं आपके, उन सब रिश्तों से अलग अलग मोहब्बतें, अपने किसी लिबास से मोहब्बत, अपनी किसी किताब से मोहब्बत, घर के किसी कमरे से मोहब्बत, उसके किसी कोने से मोहब्बत, जहाँ पर बैठकर आपको बहुत सुकून मिलता है। सो मोहब्बतों के कई रंग हैं, कई खाने हैं, और मोहब्बतें सिर्फ वो मोहब्बतें नहीं होती कि जहाँ पर लैला मजनू की तरह गीत गाए जाते हैं और जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। जब हम अपने रब के सामने दोनों हाथ जोड़कर दुआ करते हैं, तो उस वक्त दो जहानों की मोहब्बतें हमारी इस दुआ में शामिल होकर रबे कायनात के हुजूर पेश की जाती हैं।
1: होले होले से हवा लगती है, होले होले से दवा,
0: और ये मोहब्बत होले होले से इतनी पकती चली जाती है, इतनी गहरी होती चली जाती है कि जब तक आप सजदा नहीं दे पाते तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। अपने रब के आगे सजदा देते हुए वजू से मसल्ले तक और मसल्ले से सजदा देने तक की ये मोहब्बत कितनी खूबसूरत मोहब्बत है, और कितना खूबसूरत इजहार है, अंदाज है बंदगी का।
1: होले होले हो जाएगा प्यार, चलिया होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले हो जाएगा प्यार, चलिया।
0: स्टे ट्यून्ड इन रेडियो फजा 97.1 FM आप सबको शामिल करते हैं। होले होले।

जी होले होले, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। एकदम से कहते हैं ना कि जब भी आप कुछ करते हैं जल्दबाजी के काम इतने देर पार नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता आराम से सोच के जो काम किए जाते हैं उनके अंदर बड़ी एक पायदारी होती है और वो बड़े देर तक वो काम जो हैं वो चलते हैं, उनका असर अच्छा होता है। इसीलिए तो हम पुराने दौर के लोगों को जब याद करते हैं तो हमें एक अच्छा सा एहसास होता है, एक अपनेपन का एहसास। शफकत वाले लोग पुराने दौर की जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो दौर बड़ा एक मुकम्मल सा दौर था, जहाँ पर मोहब्बतें थी, एहसार था, कुर्बानियाँ थी, एहसास थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, बड़ों का एक अपना बड़ापन था, बच्चे अपने आप को बच्चा समझते थे, बड़ों का अदब लिहाज था, हमसायों का, दोस्तों का। सो बहुत सारी दुआएं हमारे इर्द गिर्द होती थी, ब्लेसिंग्स होती थी। सो आज का इंसान इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहा है। जिन लोगों ने उस दौर को देखा वो लोग उस दौर को, उन लोगों को, उन रस्म व रिवाज को बहुत मिस करते हैं। हालांकि हम इस नए दौर में बड़ी आराम से एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल और मन पता नहीं क्यों उसी दौर में फंसा हुआ है। क्योंकि सुनहरे दौर थे और बहुत ही गहरे लोग थे, होले होले से दुआ देते थे, सर पे हाथ रख कर, सीने से लगा कर। और हमारी बड़ी जो थी, जो बड़ी बूढ़ियाँ थी, बड़े से दुपट्टे के साथ जब किसी को भी सर पर शफकत भरा हाथ फेरती, सीने से लगाती, कोई अजीब अच्छी सी, बहुत अच्छी सी हमदर्द सी खुशबू जो थी वो महसूस हुआ करती थी। ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने बहुत ही शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से आपको सीने से लगाकर होले होले से ज़िंदगी भर के लिए दुआ दे दी है।

और जी एक प्यारा सा गीत आप सबको अच्छा लगेगा यकीनन। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या करें हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करें। बहुत प्यारे से लिरिक्स, खूबसूरत गीत और इस वक्त की डिमांड भी यही है। ड्राइव टाइम चल रहा है और बहुत सारे लोग गाड़ियों में अपना सफ़र जो है वो घर की तरफ जाने की तैयारी होगी। एक क्या कहते हैं कि खूबसूरत दिन कह लें, कामयाब दिन गुजारने के बाद हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक थका देने वाला दिन आप गुजार के घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक कामयाब दिन जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें की होंगी और उसके बाद आप उस घर की तरफ आप जा रहे हैं जिसकी महफूज छत आपको एक माँ की तरह अपनी आगोश में लेगी। आप थोड़ी देर टीवी देखेंगे, अपना लिबास तब्दील करेंगे और उसके बाद फिर खाना खाएंगे, अपनी फैमिली के साथ मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्यों कहता है इंसान के घर की वहशत से लरजता हूँ मगर जाने क्यों। शाम होती है तो घर जाने को दिल चाहता है।

जी आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM और मैं हूँ फाखरा मिर्सा। मोहब्बतों से गुंदे और यकीन से बंधे रिश्तों के साथ आप सुन रहे मुझे

और ये फिल्म थी मैं यहाँ हूँ और शाहरुख खान पर फिल्माया गया तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या करें एक प्यारा सा गीत आपने सुना FM 97 से और जैसे कि हमने कहा कि आप लोग घर की तरफ रवा दवा हैं गाड़ियों में बैठे हैं कुछ सुन रहे होंगे कुछ ने रेडियो ऑफ किया होगा और उसके बाद जी हाँ दिन भर की एक कामयाब रूटीन के बाद आप घर की तरफ जा रहे हैं इस यकीन के साथ कि घर जाएंगे लिबास चेंज करेंगे शूज़ बदलेंगे रिलैक्स होकर सोफे पर बैठेंगे कुछ कुछ तो घर वालों को डांटेंगे भी मे भी हो सकता है घर में खाना सही टाइम पे ना बना हो या आपकी पसंद की डिश ना बनी हो जो आप खाना चाह रहे हो आपका तौलिया आपको ना मिल रहा हो घर में कुछ गेस्ट आए हों जो कि उस वक्त आपका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होगा कि मैं घर जाऊं तो कुछ गेस्ट आए हों मैं भी घर वाले घर पे ना हूं तो ऐसी बहुत सारी चीजें इंसान को उलझाती हैं लेकिन घर एक ऐसी छत होती है जहां पर जाते ही इंसान अपना बाहर का लिबास तब्दील करता है और फिर लिबास तब्दील करने के बाद क्या होता है बहुत रिलैक्स हो जाता है और ये लिबास तब्दील करना क्यों ज़रूरी होता है ये हर शख्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना लिबास क्यों बदलते हैं क्योंकि लिबास हमारे दिन भर की एनर्जी उठाए रखता है इस लिबास से अलग होना चाहिए जिसे हम दिन के एंड पर अहतमाम पर अपने आप से अलग करते हैं सुबह उठते ही नहाने धोने के बाद हम लिबास को पहनते हैं वो सादा सा पुरसकून लिबास जो हमारे जहन को ऐसे माहौल की खबर कर दे कि अब ठहर जाओ वहाँ पर ठहरना है लिबास पहनते हुए हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं पार्टी का लिबास कैजुअल लिबास काम करते हुए जो लिबास पहनते हैं बाज़ार में जाते हुए किसी शादी में किसी फोतगी में किसी दरवाज़ा अचानक से खटके तो उस वक्त एकदम से हम जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा ढूंढते हैं चप्पल ढूंढते हैं और कभी कभी तो जो आजकल पार्सल देने वाले हैं वो तो इतना मौका भी नहीं देते कि आप अपना दुपट्टा सही करें अपने बाल सीधे कर लें अपना जूता पहन लें वो तो एकदम से कार्ट फेंक के जा रहे होते हैं और आप एकदम से पीछे दौड़ के जाते हैं और आवाज़ें दे रहे होते हैं लेकिन वो सुनते कहाँ हैं सो ये लिबास हमारी एनर्जी जो उठाए रखता है ये हमारा हमसे अलग करना क्यों ज़रूरी होता है बताएंगे स्टेट यूनिट रेडियो फसा 97.1 FM

और जी शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया ये गीत शफकत अमानत अली की आवाज। कितना खूबसूरत गीत है ना, मुझे हमेशा ये गीत बहुत अच्छा लगा। एक डेप्थ है इस गीत के अंदर और इसका म्यूजिक, इसके लिरिक्स, और बहुत अच्छे से फिल्माया गया ये गीत मितवा। रेडियो फजा, जी हाँ, 97.1 FM। तो जी बात कर रहे थे हम लिबास की, कि लिबास को अपने आप से अलग करना, चेंज करना, तब्दील करना क्यों ज़रूरी होता है। तो जी कहते हैं कि लिबास को हमसे अलग करना मुख्तलिफ टाइमों में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बाहर जा रहे हैं तो लिबास को तब्दील करना, वापस आके लिबास तब्दील करना, घर के अंदर ढीला ढाला सा कंफर्टेबल सा लिबास पहनना। अल्लाह ताला ने रात को सुकून और नींद का सरिया बनाया। अब बहुत अजाफी शोशर आपके क्या कहते हैं कि पुख्ता अहतमाद को साइड टेबल पर रख कर आराम का भी ख्याल रखना हमारे अपने लिए ज़रूरी होता है। और लिबास जब हम अपना बदलते हैं घर आकर, तो ये क्या होता है, किसी पेन किलर के बगैर, किसी को बताए बगैर हम क्या करते हैं कि पूरे दिन गुजारने की शुक्रगुजारी होती है हमारी। घर आए, लिबास तब्दील किया, और ये उस बात की शुक्रगुजारी होती है कि जिन दिन भर हमने अपना ड्रेस, अपनी वर्दी, एक वो लिबास पहना था जो कि बाहर के लोगों के लिए था, लेकिन घर आए, कामयाब दिन गुजारा, जो भी अपनी एक्टिविटीज़ थी वो की, और उसके बाद अपना लिबास वो वाला उतारा और घर का पुरसकून सा लिबास पहना। क्योंकि आप पूरे दिन की मेहनत के बाद, पूरे दिन के काम के बाद आप पुरसकून से घर में आ जाते हैं।

सूदी लिबास का चेंज करना, ये ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत सारा बोझ आप उठा के फिर रहे थे, शिकने हरा उस पर ना पड़ जाए, उस पर कोई गन न लग जाए। और लिबास अगर ज़्यादा कुछ महंगा है तो वो गंदा ना हो जाए। सो जब आप आकर उतारते हैं, बड़े रिलैक्स से हो जाते हैं, फिर वो लिबास पहनते हैं जिसको पहनकर आपको कुछ भी नहीं होता कि इसकी उसको सिलवटें पड़ गई, उस पर शिकने आ गई, उस पर गंद लग गया, बस रिलैक्स सा लिबास। सो उसे पहनकर आप शुक्रगुजारी करते हैं। समझ, शुक्रगुजारी के लिए कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। आटे के लिए कहते हैं ना कि चुटकी भर नमक जब उसमें डाल दिया जाता है तो वो पूरे आटे में उसका टेस्ट जो है वो बदल देता है, जायका बदल जाता है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब भी हम किसी चीज़ में नमक ऐड करने का कहते हैं तो कहते हैं कि एक चुटकी नमक ऐड कर दे। जब कभी लोग मिक्स चाय पीते हैं तो देखा होगा कि मिक्स चाय के अंदर जस्ट एक पिंच सोल्ट डाला जाता है। वो एक पिंच सोल्ट जो मीठे का एक तेज सा टेस्ट होता है वो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है नमक से। सो शुक्रगुजारी जो है उसके लिए एक पिंच सॉल्ट, जी हाँ, वो भी काफ़ी होता है, जो कि हमारे दिलों तक और हमारे दिल की तहों तक शफा उतार देती है। समय दिन भर की कहानी, जब हम अपना लिबास बदलते हैं, चेंज करते हैं, हम एक किरदार से दूसरे किरदार के अंदर चले जाते हैं, तो ये किस्म की हम अपनी रूह को हिस्सा दे रहे होते हैं, अपनी रूह को फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये फूड प्रोवाइड करते हुए हमारे अंदर शुक्रगुजारी आती है, और फिर अपने आप को ये बताना कि हमारी रूह जो है वो दुरुस्त रास्ते पर सफ़र कर रही है। ये दिन और रात का आना जाना और इतने ढेर सारी चीज़ें बीच में होना एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, कहानी है, सिलसिला है। समय दिन भर चेहरे पर मेकअप से या बाहर से काम करने पर जो धूल जमती है, दिन के अख्ताम पर उसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी रात के शुरू होते ही ज़रूरी हो जाता है। और हम में से हर शख्स हाथ धोता है, चेहरा धोता है। सोने से पहले लोग अपना चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, क्योंकि दिन भर की वो धूल, वो मिट्टी, वो नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो सब धो के इंसान शुक्रगुजारी के साथ, नींद कहते ना कि दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती थी। तो ये अल्लाह ताला ने जो सिस्टम एक रात और दिन का बनाया था, उसमें रात एक माँ की तरह हर थके मांदे को अपनी आगोश में ले लेती है। तो जी, अगर आपके पास रात का अलग से पहनावा है जिसे आप इस्त्री करते हैं और साफ सुथरा रखते हैं, तो ये एक अच्छे और नफीस इंसान की क्या है, आदत है। ऐसे शख्स को नफीस कहेंगे और अपना ख्याल रखने वाला कहेंगे, जो रात के लिबास को भी इस्त्री करता है, साफ सुथरा सा होता है, और दो एक दिन के बाद वो दूसरा लिबास पहनता है, उसी को पूरा हफ्ता रिपीट नहीं करता रहता। अगर आप दो दिन के बाद अपने रात के पहनने वाले कपड़े धोने वाली बास्केट में डालते हैं

उस बात के जवाब बनाना शुरू हो जाता है हमारा ब्रेन। और ये एक ब्रेन की एक्सरसाइज जो है ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर खामोशी क्या करती है कि हमारे ब्रेन को सुला देती है, एक्टिव नहीं रहता हमारा ब्रेन। सो मुकालमा एक दूसरे के साथ चलाते रहा करें, डिस्कशंस, बात, सवाल और जवाब। हेल्दी डिस्कशंस क्यों ज़रूरी हैं?

बहुत हमारे रस्म रिवाज थे, जिस त्यौहार थे जिनमें लोग एक दूसरे के साथ मिल के बहुत कुछ करते थे, बहुत दिनों तक इंजॉय करते थे। सुनहरे दौर थे और बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा गहरे लोग थे। उन लोगों में से आज भी कोई मिल जाए तो इन पता चलता है, बस दिल चाहता है कि उनके आगोश में सर रख के बस इंसान आंखें बंद कर ले। सो जी, मासूमियत भरे पुराने दौर में जब बर्तनों की अलमारियों में अखबार रखे जाते थे, और उर्दू का अखबार नहीं रखा जाता था, एक रिस्पेक्ट होती थी, सिर्फ उर्दू के लिखे होने की इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि लोग उसको भी किसी अलमारी में नहीं रखते थे, किसी चीज़ को उस अखबार में डाल के किसी को नहीं देते थे कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। सादा कागज़ या फिर वो वाले कागज़ इस्तेमाल किए जाते थे जिन पर कुछ लिखा ना हो, अगर हो भी तहरीर वो वाली जो कि उर्दू ना हो। और उसके बाद किसी की छोटी छोटी नादानियों पर कोई ऐसा किस्सा सुनाकर उसको खौफजदा किया जाता था, उसके अंदर एक डर बिठाया जाता था। जैसे कि मुझे याद है बचपन में हमें कहा जाता था कि नमक अगर आपका ज़मीन पर गिर गया तो आपको क़यामत वाले दिन अपनी पलकों से उठाना पड़ेगा। हालांकि इसमें कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था, ये कोई सच्ची बात नहीं थी, लेकिन बड़े जो थे वो समझाने के लिए कि बच्चे ने वैसे तो सुनना नहीं है, तो इसको कोई छोटी सी डराने वाली बात कह देते हैं। जैसे अंडों के छिलकों पे जब हम छोटे थे तो कहीं पे नज़र आए तो हमने उसको पर पाँव रख के वो जो उसकी क्रंच की एक आवाज़ होती थी उसको सुनने का बड़ा मज़ा आता था। तो वहाँ पर बताया जाता था कि अगर आपने अंडे के छिलके पर ऐसे पाँव रखा तो आपको छोटे छोटे से दाने निकल आएंगे जो कि बड़े दर्द वाले होंगे। नाखून काट कर हमें कहा जाता था कि इनको ज़मीन में दफना देना है, नहीं तो क़यामत वाले दिन या आपको पूछा जाएगा ये नाखून इस तरह नहीं फेंकने। हालांकि अगर देखा जाए तो अब जब हम बड़े हुए तो हमें लगा कि नाखून क्योंकि गलता नहीं है और एक अच्छा अमल नहीं है कि आपने नाखून काटे और वो घर में कारपेट पे पड़े, फ्लोर पे पड़े। सो ये कुछ अदब आदाब सिखाने के लिए बच्चे को शुरू से बताया जाता था कि नाखून को काट के ज़मीन में दबा देना है। खवातीन अपने बाल कंघी करके अपने बाल लपेट के किसी थैले में डाल देती थी और फिर जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते उन्हें ज़मीन में दफन कर दिया जाता या फिर दरिया में फेंक दिया जाता था। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें डराया जाता था। सो हम वो बच्चे थे जो डर डर के बड़े हुए, लेकिन क्या कमाल के बच्चे हम बड़े हुए। आज भी वो तरबियत हमारे साथ साथ चल रही है।

और जी शाहिद कपूर और करीना कपूर पर ये फिल्माया गया था गीत, रेडियो फजा से आपने सुना जी। तो बताइए आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं, कहीं पर परेशान हैं और या बहुत ज़्यादा खुश हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर आपका मूड कुछ भी करने को नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जब बिल्कुल भी मूड ना कर रहा हो कुछ करने का, तो किसी काफ़ी प्लेस पे चले जाइए, किसी रिवर साइड पर, किसी पार्क में चले जाइए, थोड़ी सी वो कीजिए, अकेले अपने आप को वक्त दीजिए, अपने साथ कुछ बातें कीजिए। कहीं कभी कभी अपने साथ अकेले में बैठकर भी चाय का कप पी लिया करें, कोई ड्रिंक ले लिया करें, कुछ वक्त अपने साथ। कहते ना कि हमारी साथ के अंदर भी कोई साथ होती है, जो तन्हाई में भी तन्हा हमें होने नहीं देती, हमें हर पल ये बावर कराती है कि कोई है, कि कोई है जो हमारे अंदर बोलता है। सो कभी कभी अपनी साथ को वक्त देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर वक्त हजूम में रहने से क्या होता है कि अपनी साथ से मुलाकात बहुत कम होती है।

रुचि जिन लोगों ने अभी सुनना शुरू किया उनको फलक तक लेके चलते हैं रेडियो फजा 97.1 FM से। जैसा कि हमने बताया कि उमर हमारे बाद शो करते होते हैं मीरपुरी शो, लेकिन आज शायद वो अपना शो नहीं कर पाएंगे और दिन भर की नशात जी हाँ सुनी आपने और अभी भी आप लाइव ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं। सब सबको शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं। अली डरबी से आपने फ़ोन किया और मिस्टर सिंह आपने भी एक पंजाबी गीत सुनना चाहा, प्रोग्राम अच्छा लगा आपको, बहुत शुक्रिया जी। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आपने सब सुनने वालों के लिए खैर की दुआ भेजी और सलाम भी भेजा। आपने कहा कि शुरू में जो आपने बात की थी सलाम करने की, तो हमारे भी मज़हब के अंदर यही है कि हम भी हाथ जोड़कर हर मिलने वाले को दुआया कलबात के साथ सलाम करते हैं। लेकिन हर जो मज़हब है, हर कल्चर है, उसमें सलाम करने का डिफरेंट अंदाज है, लेकिन मकसद और मतलब एक ही होते हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह, खूबसूरत सा पैगाम दिया आपने। अदीबा जी हाँ आपने भी बहुत प्यारी बात कही, आपने कहा कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि जब भी वो सुबह उठे पहले सलाम करें और मैं उनके माथे पर बोसा देती हूँ ताकि उन्हें आदत रहे कि हमारी माँ सुबह का आगाज सलाम और एक माथे पर बोसा देने से करती है। बहुत शुक्रिया अदीबा, एक खूबसूरत बात आपने शेयर की और मिस्टर सिंह बहुत अच्छा लगा आपका भी, और डरबी से अली आपका मैसेज भी। बहुत शुक्रिया मिस्टर चौहान, आप सुन रहे हैं और इसके साथ डॉक्टर फरीद चौधरी आप भी। आप लोग भी कुछ कहना चाहें तो 01157100097 पर शामिल हों और अपनी फीडबैक दें। पुराने और नए दौर में क्या फ़र्क है? समय कहा जाता है कि मांगने वाले गदागरों को पूरा मोहल्ला उस दौर में जानता था, उन्हें पता होता था कि हमारे मोहल्ले में आने वाले जो गदागर हैं ये कौन हैं, कहाँ से आते हैं, उनकी एक वाकफियत हो जाती थी और घरों में उनके लिए जुमेरात के खाने का इंतज़ार किया जाता था, बल्कि जुमेरात का खाना लगा दिया जाता था उनके लिए। और मांगने वालों के लिए घरों में खुले पैसे या चेंज रख दिया जाता था कि कोई सदा लगाएगा तो उसे पैसे देने हैं। आटा चावल कपड़े सब कुछ उनको दिया जाता था। और मजे की बात जो उस जमाने की थी जिसे आज बहुत मायूब समझा जाता है, और लोग कहते हैं कि जी पुराने जमाने के लोग बैकवर्ड लोग वो ये सब कहते हैं, लेकिन कोई भी ज़माना कुछ अरसे के बाद पुराना हो जाता है और अगले ज़माने के लोग उसको भी पुराना ज़माना कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, बैकवर्ड सोच। सो क्या होता है जी कि हर ज़माना अपने वक्त का सिकंदर होता है, अपने वक्त में उसके लिबास, उसके खाने पीने, उसकी रिवायात, हर चीज़ ही उस वक्त इन होती है। ये सोचिएगा एक बार अपने माँ बाप के फ़ोटोज़ जो हमने दीवारों पर लगा रखे होते हैं या एल्बम्स में होते हैं, उस वक्त उनके वो लिबास, वो उनके जेवरात, उनके हैंडबैग, उनकी हर चीज़ उस दौर के मुताबिक बहुत महंगी थी, कीमती थी, नायाब थी और यूनिक थी, क्योंकि उस वक्त भी हर शख्स जो था वो उस रिवाज को नहीं कर पाता था, अफोर्ड नहीं कर पाता था। सो उस वक्त के सिकंदर थे वो लोग, अपने वक्त के मुताबिक बेहतरीन जिंदगियां गुजारा करते थे। समय एक मज़े की बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और आजकल तो उसको बहुत ही मायूब समझा जाता है और कहा जाता है जी कि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, ये थी कि मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगा देते थे, लेकिन मजाल है किसी को कोई इन्फेक्शन होता था। तो पता है क्या, मैंने जब ये सुना देखा तो मुझे लगा कि उस वक्त लोगों के ब्लड जो थे ना वो ऑर्गेनिक और फ्रेश खाना खाते हुए उनके ब्लड जो थे वो बहुत ही फ्रेश, सबके एक ही जैसे ब्लड होते थे, इसीलिए तो एक सिरिंज से अगर एक डॉक्टर ने 60 लोगों को इंजेक्शन लगाए तो उनमें से बीमार कोई क्यों नहीं होता था।
مجھے تو یہی لگا کہ ان کے بلڈ جو تھے وہ سب کے ہی پیور ہوتے تھے, کوئی بیمار ہوتے ہی نہیں تھا, ہے نا, کسی کا جو بلڈ تھا وہ بیمار بلڈ نہیں ہوتا تھا, انفیکشن والا نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہوتے تھے لیکن پورے محلے کو ایک ہی سرنج سے ٹیکے لگا جاتے تھے. یرکان یا شدید سردی میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. سنہرے دور کے سچے لوگ تھے اور تازہ فریش کھانے کھاتے تھے, آرگینک چیزیں کھاتے تھے, ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, ماتھا ٹیکتے تھے اپنے رب کے آگے. تو ان کو بیماریاں یا ان کا بلڈ کیسے بیمار ہو سکتا تھا؟ سردیوں میں ایک دوسرے کے گھر جا کر بستروں میں گھس کر چائے پی جاتی, مونگ پھلیاں چلگوزے کھائے جاتے اور کئی کئی گھنٹے رات کو باتیں کی جاتی, دادی اماں کے قصے, خالاؤں کے قصے, پھوپھیوں کے قصے بچوں کو آج بھی یاد ہیں. جی ہاں, اور یہ سب یقیناً ہم جو لوگ اس دور سے گزر چکے ہیں یا اس دور میں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, یقیناً ہمیں وہ چیزیں اسی طرح سے یاد ہیں اور یاد رکھنی بھی چاہیے, کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہے ہوئے ہیں جو سچے تھے لوگ, گہرے تھے, سنہرے دور کے تھے, ان کا بلڈ صاف ستھرا تھا بغیر کسی بیماری کے, آرگینک کھانے کھائے ہوئے تھے ان لوگوں نے بغیر کسی ملاوٹ کے. سو ایسا یقین آپ ہی ایسی سوچتے ہوں گے جیسا میں سوچ رہی ہوں. تو یہ پیارا سا گیت جا رہا ہے جی آپ سب لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں. اور اسی گیت کو ہم کرنے جا رہے ہیں جی اریبا آپ کے نام.

अरिबा का कहना है जी आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और वो कहीं खाने के लिए बाहर जा रही हैं, सो गाड़ी में ये गीत सुनेंगी। सो अरिबा, ये आपकी जानिब से आपके मियाँ जी के नाम, इंजॉय करें अपनी एनिवर्सरी को, अच्छा सा खाना ऑर्डर करें, जस्ट रिलैक्स मूड में खाना खाएं, आज के दिन कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं लेनी, जिंदगी को खूबसूरत बनाना है।

0: और इससे पहले जी के आप छुप जाएं पल दो पल के लिए, क्योंकि ये पल दो पल छुपना जो होता है ना, ये भी कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो न पल छुपना है न दो पल छुपना है, बस क्या करना है, चलते रहना है और सामने सामने, बिल्कुल बिल्कुल सामने सामने, ये छुपने छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्टेट यूनियन रेडियो फसा 97.1 FM, और जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ 97.1 FM पे, और आप सबको शामिल करने की कोशिश में हूँ। जी हाँ नबीला, इस वक्त आपका मैसेज मिला, बहुत शुक्रिया, शामिल हुई आप, और अपनी तमाम दोस्तों के लिए आपने कहा जी ये गीत प्ले कीजिए, फिल्म वीर सारा जानम देख लो मिट गई दूरियां। और यकीनन एक क्लासिक फिल्म थी वीर जारा, और इसको जब जब देखें हमेशा लगता है कि आज ही पहली बार देखा। थोड़ा सा उदास भी करती है ये फिल्म, लेकिन एक मज़े की फिल्म भी है। इसके गीत और इसमें प्रिंटी जैन का, जी हाँ जिनका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनके जी हाँ बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग थी। इसके साथ जी शाहरुख खान थे, और फिर थे जी कौन थे, जी हाँ बहुत सारे दूसरे लोग,
1: मैं यहाँ
0: अमिताभ बच्चन थे, हिमा मालिनी जी हाँ वो थी, और एक अच्छी फिल्म थी जी हाँ, अच्छी कास्ट थी जिसको कहा जा सकता है, जो कि बहुत सालों तक बल्कि हमेशा याद रहेगी और देखी जाती रहेगी। कैसी सरहदें कैसी दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ।

0: यहाँ।
1: और कभी कभी पता है क्या होता है, इंसान ख्वाब देखना भी छोड़ देता है,
0: देख लो मिट गए,
1: क्योंकि उसे पता होता है कि ख्वाब सच्चे नहीं होते, और ख्वाबों की ताबीर जब देखता है तो ख्वाब उस तरह से नहीं होता जैसे उसने देखा होता है। तो कभी कभी आप ख्वाबों से भी दोस्ती तोड़ लेते हैं।
0: मैं यहाँ,
1: बस आप एक हकीकत की दुनिया में रहते हैं जो सच्ची होती है, अटल होती है, हमेशा रहने वाली होती है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।

और जी फिल्म वीर सारा का गीत आपने सुना FM 97 से। तो जी बात हम कर रहे थे गुजरे हुए ज़माने की, और गुजरे ज़माने में पता है ना कितनी बातें होती हैं करने को, बहुत सारी बातें। गुजरे ज़माने और जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक खिचड़ी बनती है, और बड़ी मज़े की खिचड़ी होती है ये, क्योंकि हम इस जनरेशन को वो सिखाना चाह रहे होते हैं जो हम कर गुजरे होते हैं। लेकिन नई जनरेशन ने तो ज़ाहिर है नए तजुर्बात से गुजरना है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, नई चीज़ों को देखना है, इंजॉय करना है, क्योंकि उनके ज़माने में सब कुछ नया जो आ जाता है। और हम लोग होते हैं कि उनको पीछे भेज कर उसी सड़क से गुजारना चाहते हैं जिससे गुजर कर हम मंजिल तक पहुँचे होते हैं। क्या ये रवैया दुरुस्त है या गलत है, ये तो आप फैसला करेंगे। मेरा काम तो क्या था, प्लेट में रख कर सब कुछ आपके सामने पेश करना। समझ, जैसे कि हम पहले जमाने की बात कर रहे थे, तो पहले जमाने में ये भी तो होता था कि जब खत आते थे, जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे उनके खत भी डाकिया ही पढ़कर उनको सुना देता था, या फिर वो खत रख दिया जाता, तो कोई जो घरों में पढ़ने वाला होता वो जब कहीं से वापस आता तो खत पढ़कर सुनाया जाता। और जिन औरतों के हस्बैंड उनसे दूर होते थे, वो खत जब उनका आ जाता तो फिर बस उनकी तो क्या ही हालत होती कि अब जो कोई खत पढ़ेगा उसके सामने वो खत सुनेंगी कैसे। हमने अपने बड़ों को सुना जी कि जब वो खत सुनाया जाता वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेती और चेहरा अपना नीचे करके उस खत को बहुत ही शर्मा कर सुना जाता। क्या खूबसूरत लोग थे वैसे, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से। कितनी शर्म थी, झिझक थी, और कितना क्या कहते हैं कि लोगों के पास अच्छी थी, एहसास अच्छे थे, है ना। डाक टिकट इकट्ठे करने को मशगला कहा जाता था। हमने भी अपने घरों में देखा अपने भाइयों को बहुत सारे डाक टिकट इकट्ठे किए जाते थे और बड़ी बड़ी बुक्स बनाई जाती थी, ये एक मशगला था। बच्चों की छोटी छोटी किताबें होती थी, डाइजेस्ट होते थे, बच्चों की दुनिया थी, और इस तरह के मैगजीन लगे होते थे, एक दूसरे से बारू किए जाते थे। डाकिए को घर का फर्द ही समझा जाता था, और रस्सी पानी उसको पिलाकर साइकिल की घंटी बजाता हुआ उसको रुख्सत कर दिया जाता था। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर या सुनकर ओके नहीं कहते थे, जी हाँ ओके ओके ओके, है ना ओके ओके बल्कि बात किसी की सुनकर कहते थे जी समझ गया, जी समझ आ गई, बिल्कुल जी आपने जो कहा समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, या कहते थे ठीक है जी ठीक है ना। लेकिन आज कुछ भी हो जाए तो लोग कहते हैं ओके इट्स ओके इट्स फाइन थैंक यू, जी हाँ वक्त वक्त की बात है, और हर वक्त के लिए नए जुमले जी हाँ आते हैं मार्केट में। ये जुमले जो होते हैं ना, ये भी मार्केट में आते हैं नए नए जुमले, ऐसा मत सोचें कि ये कहीं आसमां से गिर गए, ये जुमले बनाए जाते हैं, मार्केट में सेल किए जाते हैं, और फिर हर जुबान पर आम हो जाते हैं।

और जी ये गीत मायरा खान और शाहरुख खान पर फिल्माया गया है। जी मायरा खान जो थी वो भी चून चपनी मार के आए थे उधर दूसरे मुल्क में, तो उन्होंने ये गीत शाहरुख खान के साथ, गीत का नाम था जालिमा, अरिजीत सिंह ने गाया इसको और हर्षदीप

और हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। ओरे पिया, ताना बाना बुनते इंसान की जिंदगियां गुजर जाती हैं।

समीर से गीत का जो म्यूजिक था बहुत ही सूदिंग सा, बहुत ही क्लासिकल सा म्यूजिक। और ये गीत, इसके अंदर जो फिल्मिंग हुई थी वो एक कहानी थी। ये गीत पूरी एक कहानी पेश करता है।

जी चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। इस फिल्म को मैंने कई बार देखा और इस गीत को कई बार प्ले किया। यूं कहना चाहिए कि गीत मुझे इतना पसंद था कि इस गीत को मैंने कई बार सुना, लेकिन उसके बाद भी मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि जैसे आज ही इस गीत को लिखा गया हो, आज ही इस गीत को गाया गया हो। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल फिल्म, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, मुसाफिर हमको ढूंढेंगे, न जाने हम कहां होंगे। और कहते ना कि याद रह जाती है और वक्त गुजर जाते हैं। जैसा कि हमने प्रोग्राम में कहा था कि सुनहरे दौर थे, गहरे लोग थे, जो भी बात करते सच्ची करते, अच्छी बात करते, दुआया बात करते। ये वो दौर था जब गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें थी, वक्त था। गलियों में चारपाइयां बिछाई जाती, छतों पर चारपाइयां डालकर लोग सोते थे, रात को तारे गिनने का मुकाबला होता था, और अगर बारिश आ जाती तो इतनी ढेर सारी चारपाइयों को उठाया जाता। कितना खूबसूरत मंजर होता था वो। मोहल्ले के बुजुर्ग हुक्का लेकर बैठते और पुराने बुजुर्गों के वाकयात सुनाते, जिन्हें लोग शौक से सुनते थे और उनके पास से उठते नहीं थे, और जिन घरों में टीवी आया उन्होंने मोहल्ले के बच्चों के लिए दरवाजे ऐसे खुले रखे कि वो ड्रामा देखने के लिए मोहल्ले के सभी लोग उस घर में जाया करते थे। एक फ्रिज होता और उस फ्रिज में से मोहल्ले के कितने लोगों के घरों में बर्फ जाती थी। सो ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर या सुनकर ओके नहीं कहते थे, या घर में आकर कहा नहीं करते थे कि रोज बर्फ लेने आ जाते हैं, या हमारी एक अपनी प्राइवेसी है, हम क्यों किसी को टीवी देखने दें। और खुशी में सब मोहल्ले वाले मिलकर तैयारियां करते, लड़कियां रात रात जाकर ढोलकियां बजाती, गीत गाती। मोहल्ले के लड़कों को बड़ा शौक हुआ करता था उस वक्त के शादी के खाने में उस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल कर दिया जाए, क्योंकि वही तो मौका होता था लड़कियां देखने का, है ना। कितना खूबसूरत दौर था, और उन लड़कियों को देखते ही वहीं पर रिश्ते भी हो जाया करते थे। और क्या होता था जी, कुछ आप भी बताएं। जी हाँ, रेडियो फजा 97.1 FM प्रोग्राम क्योंकि अहतमाम की जानी ब्रमातावा है, और एक गीत हमने प्ले करना है। शकील, जी हाँ, शकील साहब इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और आपने कहा कि दो पर रुका ख्वाबों का कारवां और फिर तुम चल दिए, कहाँ हम कहाँ। सो जाने से पहले जिस पुराने दौर को सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उस दौर को हमने भी बहुत हद तक नहीं तो बहुत ज़्यादा हद तक अपनी आंखों से देखा। उन बुज़ुर्गों की कमी आज भी महसूस होती है। वो लोग जो यंग थे, जवान थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, शहर के जितने भी गली मोहल्लों से लेकर जितने स्टेडियम होते थे उन सब में, वो सब लोग अब बड़े हो गए, बल्कि कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए। लेकिन वो दौर, वो वक्त, वो बातें आज भी उनकी आंखों में ऐसे ही मौजूद हैं जैसे कि वो आज भी उसी दौर में मौजूद हैं। कहते हैं कि याद रह जाती है और वक्त गुजर जाते हैं, लेकिन खूबसूरत वक्त हमेशा ठहरे रहते हैं, ठंडे मीठे पानी की तरह। और उनमें जब भी इंसान का दिल चाहता है कि पाँव लटका कर थोड़ी देर के लिए रुक कर कुछ देर अपने आप को अच्छा महसूस करवाया जाए। तो जी, हम वो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और आज के दौर में भी हम अच्छे तरीके से उन्हीं यादों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं उसी तरबियत को लेकर चल रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले लोगों की भी अच्छी तरबियत की जाए, उनको साथ साथ पुराने दौर की चीज़ें भी सिखाई जाएं और नए दौर की भी, और ख़ुद भी हम नए दौर के साथ चल रहे हैं जी। सारी टेक्नोलॉजी हर चीज़ को कोशिश कर रहे हैं चलाने की, बजाने की, सूंघने की, चखने की, हर चीज़। जी हाँ, हम कौन सा पीछे रहने वालों में से हैं।
ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہر جنریشن کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ پیارا سا گیت جا رہا ہے شکیل جی آپ کے نام، آپ سننا چاہ رہے ہیں اس گیت کو؟ ویر زارا، ایک بار پھر سے بتاتی چلوں کہ ویر زارا ایک کلاسیکل فلم تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی اور ہمیشہ۔ سو یہ فلم جب بھی میں نے دیکھی، اس کی سٹوری، اس کے گیت بہت اچھے لگے۔ سو یہ پیارا سا گیت آپ کی نظر، سن رہے ہیں اس شو کو، اپنا میسج بھیجا، تہہ دل سے شکریہ۔

पुराने दौर में क्या होता था। ऐसे ही कुछ गीत, कोई रिक्शे वाला, कोई बस वाला, जब पास से गुजरते हुए बजाता तो हमें ऐसा लगता कि जैसे उसे भी कोई अपना याद आ रहा है ना। सो गुजरते ज़माने कभी पुराने नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा हमारी यादों में जवान रहते हैं और उन्हीं यादों के साथ हमारी ज़िंदगी खूबसूरत गुजरती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि जिसे किसी निस्बत से याद किया जाता है, या वो लम्हा जो आज के दिन में इसलिए ज़िंदा हो जाता है कि हमने ऐसा कुछ देखा था, सुना था। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक कश्ती देखी तो पिछले बीते सालों का एक खूबसूरत दिन याद आ गया, जब हम सब कश्ती पे बैठ के दरिया के दूसरे किनारे गए। वो खूबसूरत दिन था जब मेरे वालिद हयात थे और वो हम सबको पिकनिक पर लेके गए। हम छोटे बच्चे थे, कश्ती पर बैठे, डर भी था और एडवेंचर भी लेना था, लेकिन उस एज में डर नहीं होता, एडवेंचर ज्यादा होता है। उस कश्ती में बैठे, पानी में हाथ डाले और फिर दो एक चक्कर लगाने के बाद कश्ती वाले ने हमें वापस अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया। सो पिछले दिनों एक कश्ती को देखकर वो बचपन का जमाना याद आया और उसके साथ बहुत सारे लोग भी याद आए। और क्या दौर था। सो जी, दौर पुराने हो जाते हैं, वो सीधा नहीं होते, हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं, जवान रहते हैं। सो अपनी यादों के दरवाज़ों को कभी भी बंद ना किया करें, कहीं ना कहीं कोई खिड़की ज़रूर खुली रखा करें और यादों की किताब को हवा ज़रूर लगवाते रहा करें कि कहीं उसके सफ़े बोसीदा ना हो जाएं। और उन किताबों को कभी भी आपने अपने से अलग नहीं करना। ढेर सारी दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी फिर मिलने के लिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना और कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत।

ये प्यारा सा गीत जाते जाते मेरी तरफ से आप सब लिसनर के लिए, जिन लोगों ने मुझे सुना, जिनमें अली थे डर्बी से, डॉक्टर फरीद चौधरी थे, अलीना थी, मिस्टर सेठी थे, मिसिस खान थी और खान पास थे, और अरीबा आप थी, बहुत शुक्रिया अरीबा, आज आपकी और आपके हस्बैंड जो हैं दोनों की एनिवर्सरी है, सो हैप्पी एनिवर्सरी। दिनों को यादगार बनाना हम सब पर लाजिम होता है। ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त भी अमान अल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना और अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे रिश्तों का।

0: पाक तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

मेहनत हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM टू 8 PM, संडे 10 AM टू 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.

0: breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: Bigger and better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
5: This is a public service announcement.
6: Everybody. The station.
7: That plays
8: foot tapping music.
9: Hazar 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
11: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ना चावल है और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पार्क फूड्स है ना, जहां पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
2: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: You are listening to 97.1 FM.

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखे और पिघल पड़े, और गाना भी क्या।
2: You are listening to Radio Fazaa 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंगम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
4: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।
5: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: 0759315069. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप गाने।